नमस्कार, FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के

श्रावण मास की 22वीं तिथि तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 8:57 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 पर 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

श्रोताओं, 9:10 पे आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा 9:20 पर। 9:45 पे आप सुनेंगे कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दस बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत में गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए।

0: हर 30 मिनट पे आप सुनेंगे प्रोग्राम पर्सन बिहाइंड इट स्टोरी, और शाम 6:05 का समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। रात्रि 8 दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे संसद समीक्षा, और 8:15 का समय रहेगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। रात्रि 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम से। रात्रि 10 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कार्यक्रम का विवरण और उसका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी नागौर का जीवन चैनल है। सुबह के 9 हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 10 अगस्त तक 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। और जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये प्रतिष्ठित कलाकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कलाकार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली तथा अन्य संबंधित प्रदर्शन कलाओं से जुड़े हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन भवन में होने वाली लॉटरी में प्रदेश की 309 नगर निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉटरी में सबसे पहले अनुसूचित जाति, उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आखिर में अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा। हर वर्ग में 1/3 निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खनिज और खान संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। इससे पहले कल संसद में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा में पहले ही इसे पारित कर किया जा चुका है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए, और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: इस बीच संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। साथ ही विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बीकानेर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस और कारागार विभाग के 22 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा

0: जाएगा। इनमें सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर भंवर सिंह और एजीटीएफ सीआईडी के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह शामिल हैं। इसके अलावा 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक तथा कारागार विभाग के 4 कार्मिकों को राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक दिए जाएंगे। वहीं कारागार विभाग के 4 कार्मिकों को भी उनकी सेवाओं के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। योजना के तहत 10 अगस्त तक प्रदेश में 77,814 कार्यों पर 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। ये संख्या पिछले वर्ष इसी अवधि में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले श्रमिकों से 2,22,000 अधिक है। योजना के तहत वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 6,00,000 से अधिक कार्य जीआईएस आधारित पोर्टल पर शामिल किए गए हैं। राज्य में 1 जुलाई को शुरू हुई इस योजना के जरिए हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार ने कुल 12,636 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। बैठक में सदस्य देश आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने उभरती चुनौतियों से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ने निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के बजाय निवेश के लिए उत्प्रेरक का काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनर्उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
1: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाए।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में नवनियुक्त सीएलजी सदस्यों से संवाद करेंगे। राज्यस्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में सीएलजी सदस्यों को उनके दायित्वों और सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। जयपुर संभाग के नवनियुक्त सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। हनुमानगढ़ में सेफ सिटी अभियान के तहत पुलिस और छात्रों के बीच विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी पोर्टल के माध्यम से संवेदनशील और संदिग्ध स्थानों पर पुलिस की निगरानी जारी है और युवा भी इस अभियान से जुड़कर समाज को सुरक्षित बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
2: ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद हमारे पास खूब इनपुट्स आ रहे हैं। वो करीब 3 दिन हो गए। 3 दिनों में 50 से अधिक हमारे पास इनपुट्स पोर्टल पे आए हैं। उसके साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर है उसने पिछले 20 दिनों में एटलीस्ट 200 to 250 इनपुट्स हमारे पास आ चुके रहे। पब्लिक उस लिंक के ऊपर क्लिक करके तुरंत हमें सूचना दे रही है और हमारे सेफ टीम जो है वो मौके पे भी जा रही है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि पब्लिक हमें सूचना देना चाह रही है लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे सूचना हम तक आ सके। लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे ताकि जितना सूचना पब्लिक से सोसाइटी से हमारे पास आए तभी हम नशे के खिलाफ और इफेक्टिव एक्शन ले पाए।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार परीक्षा में 53.8% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है।

0: विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। वीबीजी रामजी योजना के तहत रोजगार सृजन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। 10 अगस्त तक 8,59,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया। और जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, सुबह के 9:10 में प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कूबड़ फोड़ डाली और झोटी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: श्रोताओं, हूँ अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर सुबह के 9:20 में। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं अनूप जलोटा, सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा। तो आइए सुनते हैं पहले अनूप जलोटा को।
1: August 14, 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की शिक्षा दिलाना चाहते हैं?
1: तो आइए, यहाँ कक्षा 6 से आचार्य तक की बीएड की पढ़ाई भी होती है।
0: राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित अध्ययन केंद्र,
1: संस्कार संस्कृति का अनूठा संगम, छात्र छात्रा दोनों के लिए एकमात्र संस्थान,
0: प्रदेश का पहला बालिका वेद विद्यालय यहाँ है, छात्रावास की सुविधा, गुरुकुल पढ़ाई। आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य महाविद्यालय जसवंतगढ़। प्रवेश आरंभ।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु। गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया है।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।

साथियों, अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आपने सुना अनूप जलोटा, सुरेश वाडेकर और सीमा मिश्रा को। ये आकाशवाणी नाग

0: और काचिरमी चैनल है। सुबह के 9:45 होने को है। अब आप सुनेंगे कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस।
1: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, and we usually ignore that the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोस थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट हैविंग टू फेस वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ। सो इफ वी आर एबल टू डू सो, वी वुड से दैट आई एम मेंटली हेल्दी, आई एम एबल टू डील विद माय मेंटल हेल्थ एडिक्वेटली। देयर आर वेरियस सिचुएशंस इन लाइफ, वेदर इट इज एट वर्क प्लेस, फैमिली, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों? तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे परस्पेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है। बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल, जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है। दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू सीक हेल्प। इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस एडिक्वेटली, वी आर फाइन, बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इश्यूज, क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं। हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल। ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है। जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सैडनेस डिप्रेशन व्हिच इज वेरी कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, एंड इट इज सैडनेस या डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड वर्ड अमंग द पब्लिक। सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज साइंस? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा को नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली। सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देयर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरीली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर। सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी attended to. At the social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to

0: फैमिली मेंबर्स छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं. समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव दे कैन बी दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइंस फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं. वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट और देयर इज अ चेंज इन माय इंटरैक्टिव. पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन बट दे आर इम्पॉर्टेंट टू बी पिक्ड. सम साइंस आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर. ये सब कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग होती है तो OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है. इट शुड बी टेकन सीरियसली, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड दे डू से दे वर्बलाइज देयर problems, their helplessness and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize. Later on, अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. These may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. It may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that mera log mazak udayenge to main nahi jata hu dikhane. At times if it is possible to teachers setting mein ya parents jo educated hai, we have small self administered questionnaire which can actually tell you ki ye is 10 items mein se itna cut off 2 ke upar hai, that means you need to consult a mental health professional. PHQ GAT 7 items, 9 items, it's hardly anything. Very simple items which can be used in community.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

0: ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन मेंटल हेल्थ एंड एक्सेस टू जस्टिस, केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी बाय डॉक्टर रचना भार्गवा, प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, एम्स दिल्ली।
2: ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में एडल्ट की प्रॉब्लम्स होती है। इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड वर्ल्ड वाइड दैट मोस्ट ऑफ द मेंटल इलनेस दे हैव देयर ऑनसेट इन द एडोलेसेंट एज। दैट्स व्हाई वी एम्फसाइज कि बच्चों में और एडोलेसेंट्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द साइंस अर्ली सो दैट वी कैन प्रिवेंट एनी सीवियरिटी ऑफ मेंटल इलनेस। हेल्प सीकिंग ट्रीटमेंट गैप इज वेरी वेरी सीवियर इन आवर कॉन्टेक्स्ट। In the recent National Mental Health Survey, 70-90% treatment gap exists. That means ki people may have mental illness but they do not seek help. So what do we do? We need to tell them that we need to seek help early. Because I'm just giving this example. बच्चे में hyperactivity, बच्चा एक जगह टिकता नहीं है, वो बार बार भाग जाता है, खाना खाने में भी बैठता नहीं है। Hyperactivity is one illness which can be easily be recognized. If it goes untreated, it is documented that it may lead to, when the child grows to an adult,

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना कस्टमाइज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं फिल्म रंग का ये प्यारा सा नगमा। आवाज़ अलका याग्निक और कुमार सानू की है, संगीत नदीम सरवन का है और गीत लिखा है समीर ने।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नगीना से। आवाज़ मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में फिल्म राम तेरी गंगा मेले से। संगीत रविंद्र जैन का और गीत लिखा है रविंद्र जैन ने।

0: है पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
0: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: RBI कहता है।

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सदमा से। आवाज सुरेश वाडेकर की, संगीत गुलजार का और गीत लिखा है हरिया राजा।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला नगमा और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म प्रेम रोग से। आवाज़ संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है संतोष आनंद ने।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब हम आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत में और सुनवाते हैं गाने नए तराने नए। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म ओके जानू से। संगीत AR रहमान का और गीत लिखा है महबूब ने। आवाज़ जुबिन नौटियाल और सशा त्रिपाठी की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आप सुनवा रहे हैं फिल्म फोगी से। आवाज़ रफ्तार की है, संगीत रफ्तार का और गीत रफ्तार का।

0: की पार्टी खत्म, चलो।
1: साथियों, अभी आपने सुना रफ्तार की आवाज़ में फिल्म फगली का ये प्यारा सा नगमा। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काबिल से। आवाज़ जुबिन नौटियाल की है, संगीत राजेश रोशन का है और गीत लिखा है कुमार ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म यंगिस्तान से। आवाज़ अरिजीत सिंह की है, संगीत जीत गांगुली का और गीत लिखा है कोसर मुनीर ने
1: कि इसमें सारे टेक्स्ट लिखे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बार बार देखो से। आवाज़ आर्को की है, संगीत आर्को और गीत लिखा है आर्को ने।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, नीरजा श्रीधर और रिचा शर्मा की आवाज़ में फिल्म है थैंक यू का ये प्यारा सा नगमा। संगीत प्रीतम का और गीत लिखा है कुमार ने।
1: प्यार तेरा प्यार मुझे खींचे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म बेफिक्र से। संगीत विशाल शेखर का और गीत लिखा है जयदीप साहनी ने।

साथियों, अभी आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

लता मंगेशकर की आवाज में मीराबाई का ये भजन आपने सुना, गांधी फेवरेट्स भजन्स बाय लता मंगेशकर, ये इस एल्बम से हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।

0: फिजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कादर गुलाम मुस्तफा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफा की आवाजें, शौकत अली ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द बेस्ट ऑफ सजदा, इस एल्बम से हम आपको ये गजल सुनवा रहे थे जिसे साहिद कबीर ने लिखा था, जगजीत सिंह का संगीत और आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। और इससे ठीक पहले आपने टुगेदर इस एल्बम से जगजीत सिंह को सुना, कैफ भोपाली के कलाम के साथ, और संगीत उन्हीं का था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में निधा फाजली का कलाम। खयाम ने इसे संगीत से सजाया और ये है एल्बम आशा और खयाम से, हमने इसे लिया है।

0: सितम। इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में गजल आप सुन रहे थे जिसे लिखा बशीर बद्र ने।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे।
1: जय घोष, वंदे मातरम।
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम रंग तरंग।

लकी अली को आप सुन रहे थे उन्हीं के संगीतबद्ध किए इस गीत में, जिसे लिखा असलम ने और इस गीत को हमने लिया एल्बम सुनो। इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे और रंग तरंग में अब आप सुनने वाले हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से गीत कमाल खान की आवाज, वीके मेहता के बोल और कमाल खान का संगीत।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, निदा फाजली ने से लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है मैं हूं ना फिल्म से। सोनू निगम और आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों

0: पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचीं। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं की फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

खुदा गवाह फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे

0: ने सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहासे हुजूर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना हिम्मत वाला फिल्म का गीत जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, इंदिवर के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में नागिन, माफ कीजिएगा, नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। दोपहर के 1 बजे अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, ताम्र पत्र और अंग वस्त्रम दिया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, अधिकरण सुधार विधेयक, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

0: कि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के 603 लाभार्थियों को आवास आवंटन की चाबियां सौंपी। इनमें जयपुर विकास प्राधिकरण के 473, कोटा विकास प्राधिकरण के 50 और जोधपुर विकास प्राधिकरण के 80 आवास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्का घर मिलने से इन परिवारों के नए जीवन की शुरुआत हो रही है और सामाजिक न्याय की अवधारणा साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आवास के साथ इन परिवारों को रोजगार और शिक्षा से जोड़ने का भी काम करेगी। समाचार पढ़े जाने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। स्वायत्त शासन भवन में चल रही इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश की 309 नगर निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों का आरक्षण तय किया जा रहा है। लॉटरी में अनुसूचित जाति के बाद अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निकायों का चयन किया जा रहा है। राज्य में 400 सीएम राइज विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। ये बात शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने जयपुर में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विशेषज्ञों को विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार परक प्रशिक्षण और भावनात्मक विकास का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य, स्कूल छोड़ने की समस्या रोकने और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार पर भी चर्चा हुई। प्रदेश में आज सभी जिलों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि कल से बारिश का दौर कमजोर पड़ने की संभावना है। इस बीच सवाईमाधोपुर में सुबह हल्की बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में राज्य के दक्षिणी हिस्सों में जमकर बादल बरसे। भीलवाड़ा, सलूम्बर और उदयपुर में भारी बारिश हुई। सबसे अधिक 14.5 सेंटीमीटर पानी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बरसा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर जिलों में भी अच्छी बरसात दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। अच्छी बारिश के बाद बीसलपुर बांध में पानी पहुंचाने वाली त्रिवेणी नदी इस मॉनसून सीजन में पहली बार तेज बहाव के साथ बहती नजर आई। नदी का गेज 3 मीटर से ऊपर पहुंच गया है। इससे बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। लगातार बारिश और नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने चंबल से सटे गांवों में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:05 में अब आपको फिर से ले चलते हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य मानसिक तनाव और शोर से घिरा है, तब प्रकृति की ये संगीतमयता एक औषधि की तरह काम करती है। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में बिताकर उसके इस मूक संगीत को सुनना हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आज प्रकृति को निहारने भी ये कहीं गए हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये इबारत प्रकृति को केवल देखने नहीं बल्कि उसे सुनने महसूस करने का निमंत्रण देती है। प्रकृति जब गुनगुनाती है तो उसके हाथ में कोई वाद्य नहीं होता, फिर भी उसकी हर आहट में संगीत जन्म लेता है। हवा की सरसराहट, बादलों की थाप, बारिश की बूंदों की रुंझन और दूर बैठी कोई चिड़िया कोमल स्वर में उस अनदेखे गीत की एक पंक्ति गुनगुना देती है और मन जाने कब उस अनसुनी धुन का हिस्सा बन जाता है। शायद सुकून भी यही है, जब बाहर प्रकृति अपना संगीत बजाती रहे और भीतर कोई खामोश सुर देर तक मुस्कुराता रहे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू चारों ओर संगीत बसा है, शहरों के चकाचौंध में, वाहनों में, रेलगाड़ी में, लोगों की बातों में, यहाँ तक कि शोर में भी संगीत बसा है। संगीत हर चीज में विद्यमान है। अगर जंगल, पहाड़ों और शांत जगह की कल्पना करें तो फिर क्या कहने। हरियाली, पहाड़, नदी, पगडंडी सभी अपनी लय में है और संगीत का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दुनिया ही एक संगीत है, बस उसके साथ हमें एकाकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। वहीं मेरे एक साथी ने कहा कि सभी जगह का तो नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाने पर, खासकर दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों से पतली पतली झरने नुमा पानी आता रहता है, तो हमने उस पानी को पिया है और बेहद ठंडा और मुंह से निकला वाह। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के टेक्स्ट में स्वर्ग से लेकर धरती, प्रकृति और प्राकृत के जीवों से लेकर सुरों को भी शामिल किया गया है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने प्रकृति का संगीत कभी महसूस किया है? उसके हर रंग संगीत में समाया हुआ है, जो अपनी थाप पर बजता है। उसका निर्देशन कभी हवा करती है तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट उसे मीलों तक पहुंचा देती है। आजकल के सावन के मौसम में रात में झिंगुर की तान, मेंढकों का लय ताल आवाज करना मन को भाता है, कानों को अच्छा भी लगता है। रात के सन्नाटे में पपीहे की बोली तो विरहिणियों के लिए जैसे जहर का प्याला लगता है, क्योंकि अभी प्रियतम दिवाली का वादा करके गया और ये पक्षी पी कहां बोलते बस बेचैनी बढ़ा रहा है। रही सही कसर झूमती पुरवाई भी निकाले, जिसने काले बादल घुमड़ कर आ रहे हैं और घर आंगन को तर कर दे रहे हैं। ऐसे में आधी रात में कड़कती बिजली तो जान ही निकाल देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गीत जीवन की बहार है और जब बारिश का मौसम हो तो चारों ओर झमझमा करके रागिनी की बहार आ जाती है। गीत नदी की धारा के समान है। संगीत कठिन वक्त के लिए औषधि की तरह है। कितना भी कठिन वक्त हो, संगीत मन और दिल के लिए राहत की तरह है। तो ऐसी ही एक राहत, यानी ऐसा ही गीत आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये भी बताते रहिए कि क्या आपने प्राकृतिक जलाशयों में कभी कुछ नहाने नहाने या फिर पानी पीने या सर पैर डुबाकर उस पर जल को महसूस करने का कोई काम किया है? किया है तो वो किससे हमसे बताइए। और कौन से प्राकृतिक जगहों की आपने यात्रा की है जब आपके मन को ऐसा लगा कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं है?

लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजें। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में खेतों में बहुत ही घूमे हैं, खूब हरियाली होती थी, नहरों का पानी पिया है, तालाब में बहुत नहाए हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपको प्रकृति का बड़ा ही सुकूनदायक एक साथ मिला है हमेशा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत का बताने, संगीत के बगैर जीवन अधूरा लगता है। बच्चों के रोने हंसने बात करने समय हवा से सरसराते पेड़ पत्तों की आवाज, गाय भैंस के रंभाने में भी कुछ संगीत का पुट होता है। जब कभी मन बहुत उदास हो, किसी भी काम में मन ना लगे, तो खूबसूरत गीत सुनने से मन हल्का महसूस करने लगता है। संगीत सुनते रहने से अनेक रोग भी कम होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, संगीत से तो कई रोगों का इलाज भी होता है। संगीत पद्धति भी इसके लिए काम आती है। हमारे साथी कह रहे हैं हमें तो प्रकृति के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है। यदि हमें काम ना हो तो हम बस प्रकृति के साथ रहना चाहेंगे, पर हम घर में रहकर ही इसका अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे कि पक्षियों की आवाजों में भी संगीत और पत्तियों पर पड़ती बारिश की बूंदों में भी अद्भुत संगीत महसूस किया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सुरताल का अद्भुत संगम है। आज ऊंचे ऊंचे घने जंगलों और ऊंचे पर्वत से पहाड़ों को चीरती हुई झरनों का अद्भुत शोर और संगीत पूरी प्रकृति से लोगों का मन मोह लेती है। और हरे हरे पेड़ों और उसकी शाखाओं से बारिश की बूंदें प्रकृति के सौंदर्य को अलग से खुशनुमा बना देती है। पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो थपथपाहट से एक तालबद्ध संगीत सुनाई देता है। एक हल्की से नरम आवाज पैदा होती है जिससे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। बस पानी के बरसने का प्राकृतिक शोर ही सुनाई देता है। छोटे छोटे तालाबों में पानी की बूंदें गिरने से एक तालाबों में गोल घेरे बनते हैं तो अजीब तरह का एक संगीत इससे उत्पन्न होता है। वहीं हमारे और साथी बता रहे हैं कि प्रकृति का संगीत शब्दों का मोहताज नहीं होता, सीधे दिल से बात करता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाट जैसे कोई राग अलापती है, पत्तों की सरसराहट में बांसुरी की तान सुनाई देती है, और दूर बहती नदी की कलकल में तबले की थाप, बारिश की बूंदें जब छत और मिट्टी पर गिरती है तो लगता है धरती खुद कोई करुण गीत गा रही है जिसमें खुशी भी है और विरह भी। जंगल की गहरी रात में झिंगरों की झंकार और हवा का सन्नाटा मिलकर ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो सबसे ऊंचा संगीत बन जाता है। ये संगीत ना किसी सभा में बजता है, ना किसी स्टेज पर जहां हम रुककर सुने। जिस दिन हम सच में सुन लेते हैं उस दिन समझ आता है कि प्रकृति हमें हर पल बिना मांगे सुकून का सबसे पुराना राग

अलाप रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो कुछ देर अगर आप शांति से वहां रुकते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आपको सुनाई देती हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि जब हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो अपने अंदर इतना शोर भर कर ले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती देखकर ही कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, कभी हम बहुत सारी फोटोज खींचने के चक्कर में रह जाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो फोटोज भी लीजिए यादों के लिए, लेकिन कुछ देर शांति से बैठकर उस वक्त को महसूस कीजिए। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, हमें बताइए आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूँ। वहां हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था, और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहां की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे, और साथ में ठंडी हवा के झोंके, और रात में बारिश की जो बूंदे होती है वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहां की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी ने एक दूसरी बात बताई। वो कह रहे हैं कि गंगटोक की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी, और सुबह सुबह फोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनन फानन में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर, और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पाँव जोड़कर सबको अलग अलग, क्योंकि भूस्खलन से जाम था, तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी, और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो ये जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें, क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदे, हवा के रुझान, नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे, और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में उसे महसूस कर सकें। आंखें भी छलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भाव विवल हो जाते हैं, और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना, वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो जरूर महसूस करना चाहिए। जल्द ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले, नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने, मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताजा हुई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं सभी साथी, ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूं हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूं, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूं। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे एक साथी कहने की प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कलकल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल, जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छिड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई की सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती है। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायले के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल है जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए। और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहां के झील में नाव से सैर करने गए थे। उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहां मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत जरूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहां वास करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली, कल कल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है। लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई, ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहां जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहां जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहां छोड़ आते हैं, वो हमारे बाद जो लोग आएंगे वहां देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा। या हो सकता है उन्हें लगे कि वहां कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सब थिरकने वाले हैं, हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे। कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है, कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है। हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है, सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है। कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है इसे अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत। यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है संगीत के आदि स्रोत। भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं। माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे एक साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा, वो कह रहे हैं छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले जब संगीत के कणकण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। इमासर देसाई और मलेशिया की आवाज़ उम्मीद, जावेद अख्तर ने से लिखा, ए आर रहमान का संगीत। और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी, वो कह रहे हैं कि आज इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत के मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई। डरी सहमी सी कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस ननी गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ ही सेकेंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई, गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षण भंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार के सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे

तो वीसीआर पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग वीसीआर पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं अलग अलग बातें, हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की, एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है, ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम छोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम छोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र, और चारधाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़

कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते बादलों में टपकती बूंदों में रिमझिम बारिशों की फुहारों में कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज में है और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल स्रोतों के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाजें सुनी, बूंदों की आवाजें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बता

चाहिए कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहां आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं, और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं, और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज में।

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्राकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव कर देती है। बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीगदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है, मैं चूकता नहीं गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूँ। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौओं का जो इस तरह से एक साथ होना

उन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है। महानगरों कार्य व्यस्तताओं से आजीज होकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे, कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूं, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसा ही एक ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं, और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज में।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी जा...

संघर्ष मन से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते दोस्तों, आज की त्रिवेणी में संकल्प की बातें होंगी। कई बार जब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने का संकल्प लेते हैं। इनमें से कुछ संकल्प पूरे होते हैं, कुछ टूट जाते हैं और कुछ संकल्प आंशिक रूप से पूरे हो पाते हैं। हो सकता है हमारे संकल्प बहुत मामूली हों, लेकिन इतना तो तय है कि गंभीरता से इन्हें निभाने पर ये कोई न कोई उपहार हमें जरूर देते हैं। संकल्प हमारे जीवन को बदलने की कवायद रखते हैं, वे आंतरिक बदलाव लाते हैं, वे जीवन की नई शुरुआत करते हैं। चाहे हम अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हों या नया अपने भीतर कुछ विकसित करना चाहते हों, जब हम संकल्प ले लेते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस ओर हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ अच्छा करने का संकल्प तो लीजिए, फिर देखिए क्या होता है।

संकल्प का अर्थ ये नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा ही करना है। छोटी छोटी बातों का या छोटे छोटे कामों का संकल्प भी लिया जा सकता है, जैसे वजन कम करना, कर्ज चुकाना, पैसा बचाना, बेहतर नौकरी पाने की कोशिश करना, फिट रहना, पौष्टिक भोजन करना, बेहतर शिक्षा पाने की कोशिश करना, नशे की आदत को छोड़ना, तनाव को कम करना, पैदल घूमना, परिवार को समय देना, ऐसा कोई भी संकल्प हो सकता है। बेशक सभी संकल्प सफल हो जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके साथ एक विश्वास भी छिपा होता है कि हम अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच तो रहे हैं या कुछ कर तो रहे हैं। हर संकल्प अपने आप में अच्छा होता है क्योंकि इसके साथ सकारात्मक संभावनाएं जुड़ी होती हैं।

छोटे संकल्प अक्सर बड़े बदलावों की नींव रखते हैं। हर दिन 10 रुपए की बचत करना या हर महीने एक पौधा लगाना, ये बातें हमारे जीवन में बहुत भारी बदलाव तो नहीं ला पाएगी, लेकिन सफलता की ओर ये पहला कदम तो जरूर होगा। संकल्प अगर वास्तविक हो तो उनके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जबरदस्ती किसी काम के पीछे पड़ने से अच्छा है हम सहज और सरल संकल्प पहले लें। आज के व्यस्त दौर में किसी काम का संकल्प लेना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं। ये संकल्प हमारी उन ख्वाहिशों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम पूरा तो करना चाहते हैं, पर समय की कमी और समर्पण के अभाव में अनदेखा कर देते हैं। सकारात्मक संकल्प मानसिक संतुष्टि में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए हो सके तो किसी सकारात्मक बदलाव का संकल्प लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान

0: पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और मिथिला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का

0: डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए विशेष करके
1: माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
2: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा

0: हुआ है, ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे FIR करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है, ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेटा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रूपये की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रूपये की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
3: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना

0: का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सदाबहार नकमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में वैजयंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।

0: वंदे सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।

0: पाकिस्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: लखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप

0: लगातार बोल रही थी
1: जी.
0: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी. तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं.
1: वो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है. शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं.
0: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
1: जी.
0: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं. मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं न कहीं प्रेशर फील होता है आपको
1: जी.
0: और कहीं न कहीं तनाव महसूस होता है. तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं. मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं और अभी तो बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12-12, 14-14 घंटे काम होते हैं. तो उतना इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें.
1: बिल्कुल. और जैसे कि ये कह सकते हैं इन दिनों तो, क्योंकि ज्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी. तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं. तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती है, भावनाएं अच्छी आती हैं.
0: और कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द तो वो आप भूल जाते हैं
1: जी.
0: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई न कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए. तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं, कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें, पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता. कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी, कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना. लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है
1: जी.
0: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना. तो अब
1: दुख में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं. और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें.
0: बिल्कुल. तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर. अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना. ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन मनाया
1: अब
0: जाता है।
1: मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है।
0: जी
1: अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है,
0: जी
1: तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का
0: पुण्य
1: ईश्वर
0: के
1: की
0: साथ
1: पूजा,
0: जुड़ा है।
1: पुण्य की तरह
0: जी
1: पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, न ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें,
0: जी
1: और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं, और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वां भाई को, उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशन को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके

0: उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता
0: हाँ
1: कितनी है।
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है, और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब
1: हाँ।
0: एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता है जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे
0: जी
1: आंख, नेत्रदान।
0: जी
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो फॉर्म
0: जी
1: भर लिया जाता है, और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है,
0: जी
1: उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है,
0: जी
1: करना पड़ता है। तो ये बात हो गई, और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं,
0: जी
1: लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए
0: जी
1: कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी
0: जी
1: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी।
0: जी
1: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें
0: जी
1: कोई भी खतरा नहीं होता है, बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब
0: एक गीत
1: सुनते
0: तेरे
1: हैं।

0: जी
1: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रहे हैं, किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
0: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता है कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक कहानी उन्होंने बता रही है कि वो उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचा कर वो इस दुनिया से गए।
1: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये, इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है। कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नजदीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए, कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो इससे क्या होता है वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं, तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं, भले आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है। अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें महानगरों में, आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं, मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है, चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो लोग वहां भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो वहां पर खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना ये भी ठीक नहीं लगता है।
0: और कई बार ये भी बताने लगते हैं कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसा ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने लगते। कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें, आप कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में, अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसे क्या क्या काम

0: बाकी रह गए थे। जैसे परिवार में किसी का विवाह, जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर
1: हाँ
0: जाते, थोड़ा और रुक जाते। ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचें तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा
1: जी
0: नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना,
1: हाँ
0: मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते
1: जी
0: हैं।
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है, आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं, तो ज्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
0: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना
1: जी
0: ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है। असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं।
1: जी
0: जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई
1: जी
0: जरूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने
1: जी
0: श्रोताओं को।

0: उपस्थिति दर्ज कराएं, आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल, और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी। जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए, शांति से उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती, लेकिन वहां जाने पर देखती हूं कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं, शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूं शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूं या ना हो सकूं किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुंचता हूं।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते शादी ब्याह में तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किनसे किनसे बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
0: अब नेहा, ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे एक

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली, और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं, और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुकीम की, जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और इसलिए पैट्रिशिया मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
1: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था, और तो और स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
0: और आखिरकार पैट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर, और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
1: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद रहते हुए। पैट्रिशिया मुकीम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए, और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
0: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया, और इसके बाद पैट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया, और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया, और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती, तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर यह हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पैट्रिशिया मुकीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
1: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए, इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पैट्रिशिया मुकीम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रहीं, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
0: जी, और पैट्रिशिया मुकीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पैट्रिशिया मुकीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पैट्रिशिया मुकीम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
0: और तकरीबन 70 वर्ष की पैट्रिशिया मुकीम हमें सिखाती है कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से

0: आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता
1: तो
0: है।
1: इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद
0: जी
1: बूंद से सागर बनता है। एक पेट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया
0: जी
1: और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया। अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत
1: जी
0: सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं। उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ। अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VBS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है। इस शौक को आप कायम रखिए, लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं,
1: जी
0: पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्या
1: कुछ
0: क्या
1: भी
0: नहीं
1: कर
0: कर
1: सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो
0: सकते।
1: के साथ सब चीजें की जा सकती है। ऐसा ही तो, मतलब हमने शुरुआत से ही ऐसे ही तो सब
0: बिल्कुल
1: बड़े हुए हम सब,
0: सही बात
1: रेडियो
0: है।
1: सुनते सुनते सारे काम करते करते।
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है,
1: हाँ
0: क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय।
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है। एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे। ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं, तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है। इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ। पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है। इसके लिए भी समय निकल ही जाता है। और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है, वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मे संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिए जुल्मे संग आंख लड़ी? 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे। अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते, मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं। एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं, तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो
1: जी
0: इनको स्पष्ट कर दें कि आज कोई शोक का दिन नहीं है। ये
1: जी
0: तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा, जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते
1: जी
0: हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई,
1: जी
0: कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहां पर शिष्टाचार की बात है,
1: जी
0: तो
1: लेकिन ममता जी, एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी,
0: बिल्कुल
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है। और
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने नहीं सुना, हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है। बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब
1: जी
0: बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और
0: को है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ। तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, कि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है, और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है। अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर

0: देखने का भी शौक होता है,
1: जी
0: तो
1: इस शौक
0: इस
1: से मुक्ति पाना
0: मुक्ति
1: जरूरी है।
0: पाए बच्चे,
1: जी
0: क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है। इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल,
1: जी
0: और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें पहचानिए।
1: जी
0: खास तौर से छोटे बच्चों के भीतर कई बार हम बहुत सारे हुनर देखते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है, और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता
1: जी
0: है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी। तो वो भी एक है, उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को उनके शौक पूरे करने दें, है ना।
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है।
1: जी
0: कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम
1: जी
0: ये नहीं कर पाते, तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं। और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी मजेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्जाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से सीनियर सिटीजन है। तो वो जब एग्जाम देने जा रही थी एक बार, तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्जाम देने। तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूं, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई।
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको,
1: जी
0: जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली,
1: जी
0: विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं, और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रहे, गमन फिल्म
1: जी
0: की गजल जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था,
1: जी
0: तलफ्फुज़ का बड़ा ख्याल रखती है वो
1: जी
0: कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो,
1: हाँ
0: तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया, और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा, और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे।
1: जी
0: तो ये बड़ी बात है, हमने उनका नाम इसलिए यहां पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए,
1: जी
0: लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र
1: उम्र
0: नहीं
1: नहीं
0: होती
1: होती,
0: है, और गाना सुनवाने के लिए भी
1: कोई समय नहीं होता।
0: तो सुनते हैं गाना।
2: जब सदा संग रहे ना को फिर दुख को

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं,
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहां भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा। और जहां कीड़े ने काटा हो वहां पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, क्योंकि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए, और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
0: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाएं नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के
1: जी
0: हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है, या फिर डिटॉल वगैरह उस पर
1: जी
0: लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि वो कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
1: जी और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसी सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे, या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं या अलमारी में रखे हैं तो भी एक बार झाड़ के पहनिए, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है कीड़ा वगैरह काटता है तो उस जगह को खुजलाएं नहीं, अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
0: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना प्रोग्राम का।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या
1: जी
0: गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: दोस्तों, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम की कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रहे हैं?
2: मैडम नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार,
2: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोली बोल रहा हूँ।
1: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
2: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
1: अच्छा,
2: दो बच्चे हारे हूँ मैं और कल्याणी है, दो बच्चे है मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
1: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
2: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे पढ़ के, लग गया हम फिर।
1: अच्छा चलो,
2: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
1: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपनी खेती बाड़ी से समय निकाल के।
2: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
1: अरे क्या बात है।
2: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
1: कराइए।
3: हेलो मैडम।
1: हेलो, क्या नाम है आपका?
3: मीरा भाई है मेरा नाम।
1: अरे मीरा भाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा भाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा भाई के ये भजन सुनिए। हाँ। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
3: हाँ, घर संभालते हैं, खेती में भी काम करते हैं।
1: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
3: हाँ।
1: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
3: महिला किसान का अनुभव ये है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास?
3: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है।
1: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको?
3: हाँ, करें, भैंसी दूते, चाय पीते।
1: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
3: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है।
1: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको।

0: उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
1: नहीं नहीं पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
0: चलिए बताइए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
2: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्रीदेव और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, नेपाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम, तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
2: जी जी।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैम। आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप?
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर, बताइए इसके बारे में। हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है। तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है।
0: हाँ।
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ।

0: टीपू के शिवरी टेम्पल है।
1: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना?
0: जी बहुत सारा।
1: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए, पहनने के लिए, बता सकती हैं आप?
0: जी यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला। जी
1: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
0: तो मुझे गाना सुना दीजिए, लता दीदी की आवाज में, जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है साबुन के झूले पर।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बड़े, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना?
1: हाँ, ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है?

0: पास एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रंग, कश्मीरी रंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
0: तो अभी आप कावा पीते हैं?
1: कभी कभी पीते हैं, तो वही तफ वगैरह बुखार उस पे भी हम वो यूज करते हैं, तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
0: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
1: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लिप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
0: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं?
1: हाँ नून चाय।
0: नून चाय ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
1: हाँ ये गुलाबी बनते हैं, इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उन पे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होते ये भी।
0: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है?
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक।
0: बिल्कुल सुनते हैं,
1: मजा आता है।
0: बिल्कुल, बताइए गाना बताइए।
1: मैडम हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, 5-6 सुर में गाते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरी बोल रहा हूँ जी, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है जी,
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं नहीं।
0: क्या फसल बोई आपने अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है।
0: ठीक है,
1: 4 महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन, और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हैं उस जगह पर।
0: अच्छा,
1: कई किसान करते हैं वैसी खेती।
0: अच्छा, यानी बारह मासी कुछ न कुछ खेत में डाला ही जाता है।
1: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना कोई फसल रहती ही है।
1: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना उपकाले में।
0: अच्छा चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
1: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
0: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
1: मजदूर भी रहते दीदी, उतना कैसा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती।
0: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
1: हाँ कैसा है, जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा
0: तो एक रानी है, चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल नाइक बोरेली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई?
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन था, छोड़ो भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर मैं मेरे बहुत से प्रोग्राम हो जाए हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
0: आप भी गाते हैं देशगान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए गा के।
1: जय हो स्तुते श्री महान मंगले दिवासपदे शुभ दे स्वतंत्र दे भगवती स्वामहम यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे।
0: बहुत सुंदर।
1: और एक गाना है, ने मजसी ने परत मातृ भूमि ला सागरा प्राण तळमळला तळमळला सागरा सागरा।
0: बहुत अच्छा।
1: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
0: जी।
1: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
0: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी। हेलो फरमाइश।
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनीतपुर आसाम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराईदेव आसाम में हुआ था। ऐसे बार बहुत लोगों की जान भी चली गई है, और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये।
0: जी जी,
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनीतपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए।
0: अच्छा।
1: और आज भी बहुत काफी धूप दे रहे है।
0: हाँ।
1: हमारे यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्की से बारिश आते है।
0: हाँ। और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इससे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा
1: और
0: आपने।
1: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलते ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
1: आसाम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो, और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की खेती होती है?
1: हमारे असम के सबसे ज्यादा सोनीतपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं,
0: जी
1: ज्यादा फेमस है ये। और हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं, तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी।
0: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में?
1: जी जी जी, वीर जरा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है, और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से।
0: ये आपका हाँ। गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है।
0: अच्छा, आपका हाँ। नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है।
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: मैम पता नहीं है, उन्होंने क्या सोच के रखा है पता नहीं, मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ मैम।
0: अभी तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो गई जरूर समझूंगी क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे हाँ, एक बात बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो।
0: कौन सा?
1: कर्मा फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली थी, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए।
1: हाँ,
0: हमारा
1: बिल्कुल ईमानदारी रहना चाहिए और
0: हाँ,
1: सब लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना बचपन याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी।
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है, सभी श्रोताओं का।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना, बारिश होना बहुत जरूरी है। चलिए,
1: और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, वो सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो महाकाल मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा हमने।
1: हाँ जी खास विशेषता है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं।
1: जी
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: जी
0: कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइशकारी टूम, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही हैं?
0: जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: पीयूष मेहता, सूरत से।
0: स्वागत है आपका पीयूष जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत मजे में।
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: स्थापना के समय से।
0: तब से आप सुनते हैं?
1: तो पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है, तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना, और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और आपके कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो, बाद में और टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है, आप एज ए लिसनर एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है,
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है, क्या क्या सीखा है आपने, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसर्जन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा चलिए,
1: रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने के
0: बिल्कुल सुनाइए।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। हाँ, आप क्या करते हैं गिरधारी जी?
1: जी, मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है। मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं ये रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा,
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठा

0: करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड से फिर ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं।
0: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
1: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना जा सकता है निडिल लगा के?
0: म्यूजिक सिस्टम है सारा, वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
1: क्या बात है, चलिए
0: का काम चल रहा है सारा।
1: बहुत अच्छा लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आप गिरधारी जी? आप
0: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर का और विविध भारती की

0: से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। डीजे सुनिए, कार्यक्रम युवा वाणी।

0: प्रयास जब बुरी तरह बिखरेंगे तेरे और हालात जब नम हो जाएंगे, जीवन के उन मुश्किल क्षणों में आत्मविश्वास के दो मीठे बोल ही तेरे काम आएंगे, आत्मविश्वास के दो मीठे बोल ही तेरे काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं युवाणी, मैं हूँ कंचन रोशन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात से। दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस, जी हाँ, हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगदान के महत्व के बारे में बताना, जागरूक करना और इससे जुड़ी जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए इस दिन को हम सब सेलिब्रेट करते हैं। निश्चित रूप से इसको लेकर भी हम सब युवाओं की बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएँ हैं और बहुत सारे अलग कर्तव्य भी। युवा में इसकी जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि युवा देश की सोच को बदलने और समाज में नया संदेश देने की ताकत रखते हैं। निश्चित रूप से जो एनर्जी है उसका हाई रिसोर्स भी है। एक युवा का सकारात्मक कदम समाज में फैली भ्रांतियों को आसानी से खत्म कर सकता है। एक छोटा प्रयास भी अगर हम करें, एक छोटा ग्रुप बना के भी इस प्रकार के प्रयास करें कि लोगों को इनसे जोड़ें, जो जिस प्रकार से ऑनलाइन पोर्टल पर जो इनके आवेदन चलते हैं, जिन फॉर्म फिल करना होता है उसको करवाएं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन तक पहुंचें, तो कम से कम जिन लोगों में रुचि है वो लोग तो जुड़ ही जाएंगे जो आज इस प्रकार के अंगदान से जुड़ी मुख्य धारा से दूर हैं। साथ ही जिन लोगों में रुचि नहीं है या किसी प्रकार की भ्रांति की वजह से वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो लोग भी काफ़ी हद तक रुचि लेने लगेंगे। दोस्तों, हम सब सोशल मीडिया और डिजिटल अभियानों के जरिए भी अंगदान का संदेश दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। अंगदान के प्रति जागरूकता से अंगों की जो कमी है उसके कारण जो होने वाली बहुत सी मौतें हैं उनको रोका जा सकता है। निश्चित रूप से इससे बड़ा अगर हम कहें कि धर्म से जुड़ा या अच्छा या नेक कार्य नहीं हो सकता, इसलिए निश्चित रूप से हमें इन सब बिंदुओं पर सोचना होगा और कुछ अपने स्तर पर भी प्रयास करने होंगे, क्योंकि NGOs या सरकार के द्वारा निश्चित रूप से हर एक चीज़, हर एक समस्या को लेकर अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से समय समय पर प्रयास किए जाते हैं, उन प्रयासों को अपडेट भी किया जाता है। किंतु सबसे बड़ा जो हम यूँ कहें कि जो मेजोरिटी है वो हम सब युवाओं की और हम सब जनमानस की है, और उन्हें अगर हम सक्रिय कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें जो अप्लाई की जाती हैं वो सही रूप में कन्वर्ट हो सकेगी। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: So girls, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे।

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, आज है गुरुवार। आपकी पसंद के तहत हमें फरमाइशी मेल में सबसे पहला मेल प्राप्त होता है पदमपुर जिला श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका का। सुनते हैं दोस्तों इनकी फरमाइश आधारित आराधना मूवी का ये प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, हमारे आपकी पसंद के तहत ही अगले फरमाइश करता हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नौखेलाल। दोस्तों, इन्होंने फरमाइश की है बॉर्डर फिल्म से। सुनते हैं इनकी पसंद आधारित ये गीत।

दोस्तों, अंगदान से जुड़ी जागरूकता की बातें हम कर रहे थे। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विशेष शिविर और सेमिनार आयोजित करके सोशल मीडिया पर नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और वीडियो के जरिए सही जानकारी साझा करके भी हम काफ़ी हद तक जागरूकता फैला सकते हैं। इसी प्रकार से जो यूथ हैं उनमें अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करके भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। हम सब सरकारी पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन अंगदान का संकल्प ले सकते हैं। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन संकल्प फॉर्म भरें और उन्हें चुनते हुए कि आप कौन से अंगदान, किस प्रकार का अंगदान करना चाहेंगे या किस प्रकार के अंग का अंगदान करना चाहेंगे, इस विकल्प को चूज करते हुए पंजीकरण पूरा होने पर अपना डिजिटल दाता कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसे डोनर कार्ड कहते हैं। अपने परिवार को भी सूचित कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि उस समय जब इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होना होगा तो कानूनी सहमति भी अनिवार्य होगी और उसके तहत परिवार को जानकारी होना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम सुनते हैं आपकी पसंद के आधार पर प्राप्त हुए मेल को लेकर। तो जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हमें मेल प्राप्त होता है मोहम्मद फरहान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून का। इसके साथ ही हमें मेल प्राप्त होता है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। दोस्तों, ये लिखते हैं कि आप कैसे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सब अच्छे हैं और आप लोगों की भी अच्छी होने की आशा करते हैं। सुनते हैं आपकी पसंद आधारित ये वादा रहा मूवी से ये गीत।

0: नमस्कार, संस्कार संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: दोस्तों, बात करते हैं अंगदान से जुड़े मिथक और सच्चाई किस प्रकार से अलग अलग है। डोनर कार्ड होने पर डॉक्टर आपातकाल में मरीज को बचाने की पूरी कोशिश नहीं करते, इस प्रकार का मिथक चलता है। डॉक्टरों का पहला कर्तव्य होता है कि मरीज की जान बचाना। अंगदान की प्रक्रिया केवल तब शुरू होती है जब मेडिकल बोर्ड मरीज को ब्रेन डेड घोषित कर देता है। साथ ही अंगों को एक अत्यंत सुरक्षित और साफ सर्जिकल प्रक्रिया के जरिए निकाला जाता है, इससे अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार की मिथक चलते हैं कि अंगदान करने से मृत शरीर विकृत या खराब हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्म अंगदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा और एक पुण्य कार्य मानते हैं। इस प्रकार का मिथक चलता है कि धार्मिक रूप से अंगदान करना वर्जित है, जो कदापि सही नहीं है। साथ ही जो NOTTO की राष्ट्रीय प्रतीक्षा सूची है, वो पूरी तरह से मेडिकल इमरजेंसी ब्लड ग्रुप मैच और केवल मरीज की गंभीर स्थिति पर आधारित होती है, पैसे पर नहीं। दोस्तों, अब हम यहाँ अगले मेल की बात करते हैं। अगला मेल हमें प्राप्त होता है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। इसके साथ ही मेल हमें प्राप्त होता है PS नवाकर, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण, इंगले, सोपान, आशीष का। सुनते हैं इनकी पसंद आधारित ये गीत।

दोस्तों अगला मेल हमें प्राप्त होता है मेहर नगर उमेर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश इसके साथ ही बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत अर्जुन का आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित कुमारी ध्वनि का इसके साथ ही इसी कड़ी में हमें मेल प्राप्त होता है पद्मा टोकेश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साहा पल्लवी प्रखर कुशल नीति शाह सुरभि अश्नी मंगलाबेन और राजेंद्र जी का दोस्तों सुनते हैं इनकी पसंद आधारित ये नगमा।

दोस्तों, निश्चित रूप से अंगदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसमें रुचि दिखाते हुए अंगदान करना चाहिए और इसके तहत जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उन्हें करना होगा और जो मिथक फैले हैं सोसाइटी में उन्हें दूर करने के प्रयास भी हमारे द्वारा ही किए जाने हैं और हम सब में ही ये सारे मिथक मौजूद होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। इसे सुनिए कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी।

0: ये आकाशवाणी है। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: साहस, अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ये वो गुण हैं जो हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। और जब इन मूल्यों में नारी शक्ति का अदम्य साहस और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जुड़ जाता है तो एक प्रेरक गाथा बन जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा के बारे में आज हम बात करेंगे IASV त्रिवेणी समुद्र प्रदक्षिणा की, जिसमें पहली बार सेना के तीनों अंगों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और समुद्र प्रदक्षिणा की। तो ये अभियान कैसा रहा, क्या चुनौतियां रही, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और साथ में है मेजर प्राजक्ता पी निकम। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करें, आगाज करें इस कार्यक्रम का, तो सबसे पहले जब आपको एक्सपीडिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में पता चला, तो व्हाट वाज दैट फर्स्ट थॉट इन योर माइंड
2: कि ऐसा भी कोई एडवेंचर होता है क्या? अच्छा। टू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे और उससे पहले कभी फॉरेन कंट्री तक नहीं गए थे, तो वो जो ख्याल है कि पूरी दुनिया का चक्कर, वो नाम ही इतना बड़ा था कि लगा कि नहीं, ये तो करके देखना है कि ये चीज क्या होती है।
1: विभा जी और वैशाली जी, वायुसेना से आप हैं, तो आपने हमेशा बादलों के बीच उड़ान भरी है, लेकिन इस बार समुद्र के बीच लहरों के साथ आपको सफर करना था। तो वैशाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हलचल रही मन में जब आपको पता चला?
3: तो एक नॉर्मल डे की बात है, हम ऑफिस में बैठे हैं, ये सिग्नल आता है कि सेलिंग के लिए चुनाव हो रहे हैं और 3 सर्विसेज से लिया जा रहा है। पहले तो वो ही अविश्वसनीय था मेरे लिए। रही बात वही एयरफोर्स से सेलिंग की, हर कोई नहीं समझ पाता, यही पूछते हैं कि एयरफोर्स से होकर सेलिंग कर रहे हो, वो भी इंडियन आर्मी के साथ, ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यही एक मैसेज है सबके लिए कि ये पॉसिबल है। और यही नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल आज के टाइम में हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है
1: जी, और टीम स्पिरिट से ये सब पॉसिबल हुआ। प्राजक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके मन में क्या उस समय जहन में था जब आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये सिलेक्शन कैसे आपको एकदम से बताया गया, या आपने अपने बारे में बताया कि आप इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस अभियान के लिए?
4: एक्चुअली ये जो एक्सपीडिशन है, इसकी प्रेपरेशंस 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है, तो 3 साल का हमारा सिलेक्शन रहा है एंड 1 ईयर आप ले लो 10 मंथ्स फॉर आर एक्सपीडिशन टू यू नो स्टार्ट एंड फिनिश। तो इनिशियली इट वॉज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, तो 41 वुमेन ऑफिसर्स एंड एक अग्निवीर हमारे साथ थे और हम 42 टोटल थे फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, जिन्होंने 3 फेजेज ऑफ सिलेक्शन ट्रायल्स कम्प्लीट किया ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके बाद जाके फिर ये फाइनल टीम सेलेक्ट हुई है 9 वुमेन ऑफिसर्स की फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। पहले तो चलो हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा था, बट जिस दिन पता चला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो उस टाइम ऐसे लगा कि अब तो गए। तो लिट एक्चुअली बिकॉज इट इज अ मैसिव थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग टू यू नो गो अराउंड द वर्ल्ड, तो इनिशियल फियर तो रहता ही है।
1: आपसे जाना चाहूंगी विभा जी, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग का पार्ट, क्योंकि आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो आपको आर्मी के जब आपने ट्रेनिंग ली होगी तब भी आपको मिली होगी, लेकिन इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी गई?
2: देखिए, अगर हम सेलिंग की बात करेंगे तो जो हमारी सेलिंग थी वो छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, हमें समुद्र में 9 से 10 महीने रहना था। इसका मतलब कि हमको तैयार करना था मानसिक, शारीरिक एंड एज अ टीम ऑल्सो। तो जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो एकेडमी की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फिर एज डिफेंस फोर्सेस जिस तरीके से

0: हमको ट्रेन किया जाता है, यस वो काफी हद तक हमारे काम आई क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत कॉमन होती है। लेकिन समुद्र में इस एक्सपीडिशन को करने के लिए एडिशनल हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। जैसे हम सबको याद है कि हम सुबह 5 बजे उठते थे और 1.5 घंटे तक भागना, दौड़ना, रस्सी चढ़ना, पुशअप, पुलअप, मतलब हर बॉडी की एक एक मसल को इतना स्ट्रांग बनाया गया कि जब आप समुद्र में रहोगे तो आपको किसी तरीके की तकलीफ ना आए। फिर दूसरा, ट्रेनिंग को इतना कठिन इसलिए किया गया बिकॉज समुद्र में आप खुद हो, आपके पास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर रही बात, हम सब में से किसी को सेलिंग आती नहीं थी, तो इसका मतलब हमें बोट क्या होती है, कैसे चलाते हैं, हवा को कैसे पढ़ते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं, समुद्र में अगर दूसरे शिप्स हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये एक एक चीज हमें पढ़ाई गई। और उसके बाद टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज अ टीम आप वहां पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी टीम बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज हुई।
1: जी स्क्वाड लीडर वैशाली, आपको फिजिकल ट्रेनिंग तो दी गई और थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिव दी गई इसमें, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है आपकी मेंटल ट्रेनिंग, क्योंकि आप कई बार आपको ट्रेन किया जाता है लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको लगता है शायद दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग, तो कुछ ऐसा अलग रहा आपको, तो मेंटल ट्रेनिंग भी फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह से काम आई आपके एक्सपीडिशन में?
2: Being from a defense background or wearing a uniform itself, be it army, navy or air force, mentally strong होने की हमें already training दी जाती है, तो यहाँ पे भी वही चीज काम आई। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगी कि endurance और stamina की महीनों महीनों तक कुछ ना दिखना, कोई color ना दिखना, कोई पक्षी ना दिखना, इंसान ना दिखना, और महीनों बाद कोई एक शिप भी दिख जाती है तो उसमें भी बहुत खुशी होती है कि आज हमने एक शिप देखी, और उसकी बात पूरे 1-1.5 दिन तक करते रहना कि आज हमने रेड कलर की एक शिप देखी करके। तो वो चीज ट्रेनिंग करते करते, सेलिंग करते करते बढ़ाई गई। अकेलापन फील होना, उसकी जो फाइट होती है वो हमने सेलिंग करते करते ही सीखी। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आई फील की था, बाकी सेम।
1: मेजर प्राजक्ता, आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जैसे अब आप फिजिकल ट्रेनिंग भी, मेंटल ट्रेनिंग भी, फिर भी उसको सस्टेन करना और अपने एक ना आत्मविश्वास बनाए रखना, नहीं हम कर लेंगे, तो ऐसे भी कुछ पल आए उस समय जब आप एक्सपेडिशन पर थी?
3: ऐसा नहीं था कि हम हर रोज जब उठ रहे हैं कि हम मोटिवेटेड फील करें कि आज तो भाई एकदम जोश में है हम, ऐसा नहीं था। बहुत सारे दिन थे जब हम इतने टायर्ड थे, रात रात तक हम कुछ रिपेयर कर रहे हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं, अगले दिन इतना फटीग है हम में। एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इनफैक्ट पहले भी, बिफोर फ्लैग ऑफ हुआ हमारा, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जब हमें लगा है कि हम जा पाएंगे या नहीं, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। बट बिकॉज 9 लोगों का एक ही मिशन था, एक ही गोल था, सो दैट यू नो मोटिवेट्स यू। इवन अगर आप एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही हूँ तो आई नो कि बाकी हैं हु विल लिफ्ट मी अप।
1: टीम वर्क काम आई इस पूरे एक्सपेडिशन में। विंग कमांडर विभा जी, जैसे उन्होंने कहा कि वैशाली जी ने कि शिप एक दिख जाती थी तो बहुत अच्छा लगता था, और हम सभी के जहन में ये है कि आप लोग एक शिप में गए हैं, बहुत आरामदायक थी जिसमें सभी सुविधाएं थी, तो क्या वाकई में ऐसा था या आपको और भी कई इसको लेकर भी, उठने जागने सोने को लेकर भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
0: जनरली हम फोर्सेस में हैं तो हमारे पास खाना खाने के लिए एक मेस होती है, हमें एक अकोमोडेशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे जब मेरे घर वालों पूछते थे कि अच्छा आज मेस में क्या बना है, बिकॉज शिप में भी एक मेस होती है, डाइनिंग हॉल होता है जहाँ आप खाते हो, तो मैंने कहा मेस नहीं है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ एक खड़े होने की जगह होती है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कुक अच्छा खाना बनाता है, हमने कहा कोई कुक नहीं होता है। हमारा लिविंग एरिया था एक 50 फीट लंबी बोट और 15 फीट चौड़ी, इसी में हमारी पूरी दुनिया थी। और धीरे धीरे जब हम उस बोट में रहे तो हमको ये भी इतना लंबा लगता था कि अरे वाह हमारे पास कितनी ज्यादा जगह है। और अगर दिनचर्या की बात करेंगे तो वो जो बोट है वो बहुत छोटी है, तो जब समुद्र की लहरें या विंड होता है तो बोट कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एक दिन बताइए, तो उसमें सोना, खाना, पीना, जागना कुछ भी एक जो नॉर्मल इंसान करता है वैसा नहीं होता है। एक तो समुद्र में वैसे ही आपकी बॉडी के रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं बिकॉज कंडीशंस बहुत हार्श होती है, और उसमें हम खुद ही खाना बना रहे हैं, तो मौसम अच्छा हो खराब हो उसके हिसाब से खाना बनता था। धरती पे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का जो आनंद है, और वो 6 घंटे की नींद लेने का जो आनंद है, और वो कहते हैं ना जॉय ऑफ लिटिल थिंग्स, ये हमने बोट पे

0: कैसी क्या।
1: जैसे खाने के बारे में आपने बताया, आप लोग तीनों अलग अलग कोने से हैं, तो सबका जो उसका जो टेस्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो किसकी पसंद का खाना बनता था, कैसे बनता था?
0: फॉर्चुनेटली हमारी बोट में ऐसे टीम मेंबर्स थे जिनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, और जब हम कहते हैं बहुत अच्छा, वो ऐसा नहीं कि खाना बनाना चाहता है, वो उनका पैशन था। तो यहाँ पे जो ये प्राजक्ता जी बैठी है, हम वेट करते थे कि ये मदर ऑफ द बोट, मतलब वो क्रू मेंबर जो उस दिन तीनों टाइम का खाना बनाएगा। तो जब पता चलता था कि हाँ भाई आज प्राजक्ता जी की ड्यूटी है, तो पूरा दिन सब यही पूछते थे आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा। प्राजक्ता जी ने बोट में, समुद्र में हालत खराब है, सबको सी सिकनेस हो रही है, मतलब उल्टियां लग रही है, बट इन्होंने हमें छोले आलू टिक्की चाट खिला दी और हम
1: दिन
0: आपको
1: बन गया,
0: दिन महीने बन गए।
1: ये है, मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं तो जैसे सी सिकनेस की बात की, तो इस तरह से कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो आप बताएं वैशाली जी किस तरह से उसको आपने हैंडल किया, तो कोई वहां पे कोई स्वास्थ्य चिकित्सक भी था आपके साथ जिसने आपको मदद की इस दौरान?
2: हमने मेडिकल वाइज जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, मोस्टली इट इज विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो सी सिकनेस है, फीवर है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं उसमें जो तबीयत खराब होती है, और इट इज योर मंथली साइकिल। दीज आर द काइंड ऑफ इश्यूज दैट वी हैव फेस्ड, एंड वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी एक क्रू मेंबर, एक मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है हु इज ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो बिसाइड्स वो सेलिंग तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबका बोट में ख्याल रखना। वो उनका रहना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता था, वो उस हालत में आने ही नहीं देती थी हमें कि हम बिल्कुल ही बेड में पड़ जाएं। शी यूज टू टॉक टू अस, पता करना एवरी डे आज कैसा फील हो रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। प्लस थैंक गॉड ऐसी कोई आपदा नहीं आई, मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई जिसकी वजह से हमें डिटोर करना पड़े या कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाए।
1: तो आप कुल 9 लोग थे, मेजर प्रोजेक्ट था, तो किस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, क्योंकि आपको 24 घंटे रात दिन काम करना है, सेलिंग करनी है, तो कौन कैसे किस तरह से जिम्मेदारी निभाता था?
3: तो बोट पे एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 ऑफिसर्स होते थे, उसमें से एक, मतलब एवरी डे देयर वाज अ मदर ऑफ द बोट, तो हम 6 में से वो रोटेट होते रहते थे। बाकी जो 5 बचे उनमें से 2 ऑफिसर्स, मतलब 2-2 ऑफिसर्स की ड्यूटी होती थी, तो वो रोटेशनल बेसिस पे होती थी। एंड ऐसा नहीं है कि किसी एक, जैसे कि आई एम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग और मैम स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, वी ऑल नो एवरीथिंग, तो हमको सब चीज में ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो साफ सफाई हो, प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल वर्क हो, हम सबको सब आता है। तो वैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता था, इट वाज नॉट कि एक ही पर्सन पे लोड आए।
1: तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट कि सबको सब कुछ मालूम था, किसी तरह की दिक्कत ना आए।
3: यस।
1: तो आपका जब ये एक्सपीडिशन था, तो आप किन किन जगहों से गुजरी, कहाँ कहाँ से गए आप?
0: देखिए, जब हम सरकम नेविगेशन की बात करते हैं, तो सरकम नेविगेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना रूट प्लान किया था। तो हम इंडिया से सबसे पहले गए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पे हमें केप लुइन क्रॉस करना था। ऑस्ट्रेलिया में हम गए फ्रीमेंटल, फिर फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से हमारा अगला था पोर्ट ऑफ कॉल लिटिलटन न्यूजीलैंड में। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, जब हम जा रहे थे हम एक स्टॉर्म में फंस गए और हमारा सेल फट गया, और उस सेल के बिना हम आगे नहीं जा सकते थे। तो लकीली हमने एक पास में एक आइलैंड था तस्मानिया करके, वहां पे हमने हॉल्ट लिया, वो अनप्लान्ड था, बट वहां पे हम रुके, हमने अपना सेल रिपेयर किया और फिर हम आगे बढ़े न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड से फिर हम गए अर्जेंटीना, ब्यूनोस आयरिस, क्योंकि हमें सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका में केप हॉर्न करके एक जगह है जिसको ड्रेक्स पैसेज भी कहा जाता है, वो क्रॉस करना अगेन मैंडेटरी होता है। उसको क्रॉस करते हुए हम ब्यूनोस आयरिस पहुंचे अर्जेंटीना में, फिर वहां से हम गए साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। केप टाउन से इंडिया आते हुए जो हमारा थर्ड ग्रेट केप होता है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हुए फिर हम वापस इंडिया में मुंबई आ गए। तो हमारा एक्सपीडिशन मुंबई से शुरू हुआ और फिर मुंबई पे ही आके खत्म हुआ।
1: विभा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 2 बार इक्वेटर को पार किया, सदर, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रही होंगी आपने, बहुत ह्यूमिड भी, गर्मी का मौसम भी देखा होगा और बहुत ही ठंड का मौसम भी देखा होगा, तो उस जो वेदर कंडीशंस को फेस किस तरह से किया और मन में क्या दुख दुखी चल रही थी?
0: अभी भी जैसे हम आए हैं कोई हमसे पूछता है कि आप सब तो एक साल सेलिंग करके आ गए बट आपके चेहरों में कहीं लग नहीं रहा है कि आपको टैनिंग हुई है, हम उसका यही आंसर देते हैं कि हम 8 महीने इतने लेयर ऑफ क्लोथ्स हम पहन के सेलिंग करके आए हैं, हमारे शरीर का

0: कोई हिस्सा एक्सपोज ही नहीं हुआ। हमने जब इंडिया से शुरू किया तो मौसम गर्म था, लेकिन रात को हल्की हल्की ठंड होती थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले थे उस टाइम पे ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी, तो हम दो दो लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनते थे। उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड से अर्जेंटीना, जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में गए थे, वहां पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं आपको बताती हूँ, हम सर पे जितने कपड़े आ सकते थे हम उतने पहनते थे, और अब वो अगर हम काउंट करेंगे उनको तो सर पे 3 लेयर, हाथों में ग्लव्स की 3 लेयर, ऊपर 5 लेयर, 3 लेयर इनर की, उसके ऊपर फ्लीस एंड विंटर एंड वाटरप्रूफ जैकेट, तेम नीचे सॉक्स के 3 पेयर और शूज। जब हम अपनी ड्यूटी करने जाते थे तो हम इतने पैक हो जाते थे कि हम चल भी नहीं पाते थे। और उस वेदर में जैसे ही आप बाहर जाओगे, बाहर आप मानिए कि हवा की गति 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलमोस्ट, और 0 डिग्री की हवा जब आप पे लगेगी 5 मिनट में हमारे हाथ सुन्न हो जाते थे। अगर हम अपनी ड्यूटी को एक्सटेंड भी करना चाहते थे, मान लीजिए 1 घंटा, हमारे हाथ इतने सुन्न होते थे कि हम वापस अंदर आते थे, गैस पे अपने हाथ सेकते थे ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो बन पाए। एक इंसिडेंट मैं आपको इस चीज का बताना चाहूंगी, हमारा सेल फट गया था, तो जब हमारा सेल फटा तो हमें वो चेंज करना था। चेंज करने के लिए अब क्या है कि उसमें आपको हुक्स लगाने पड़ते हैं, मैन्युअली वो चेंज करनी थी, और हुक्स हमने जब ग्लव्स से लगाने की कोशिश की तो नहीं लग पाए क्योंकि ग्लव्स में फिंगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था 3 ग्लव्स से। हमने अपने ग्लव्स उतारे और हाथ एकदम सुन, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की कि मेरे हाथ सुन हो जाए। और कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, ऊपर से कॉन्टिन्यूस आपके ऊपर पानी गिरता है, तो जितने भी आपने लेयर्स पहने हैं वो हमेशा अंदर तक भीगे रहते हैं। तो हमने फाइनली फिर हाथों में पैरों में पॉलिथिन्स पहनना शुरू किया कि पानी और स्किन का थोड़ा सा टच बचे और हमारे हाथ थोड़ा लेट नंब हो। तो ये वेदर था एक्सट्रीम,
1: मतलब एक तो पानी की लहरें, ठंड और हवा, और उसके बाद अगर बरसात आ जाए तो बताइए वैशाली जी, उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि ऐसा भी कुछ हुआ था? और जैसे अभी तो हम हंस रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या हाल था?
2: नहीं नहीं, उस समय हमने ऐसे दिन देखे हैं जब हफ्तों हफ्तों बारिश हो रही थी, तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ ठंड थी, लेयर्स पहने हैं, गीले हो गए हैं, अभी आप 4 घंटे की ड्यूटी करके गए हो और 6 घंटे बाद आपको दोबारा ड्यूटी पे आना है क्योंकि रोटेशन ऐसे ही चलता है, 6 घंटे में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो आपको वही गीले कपड़े पहन के फिर 4 घंटे आना है, फिर आपको गीला होना है, फिर अगले 6 घंटे आपके वो कपड़े नहीं सूखेंगे। तो हमने शायद हफ्ता ऐसे ही निकाला होगा कि बारिश भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, बट आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप वैसे ही पहन के बैठे रहो, और जब आपकी ड्यूटी खत्म हो रही है तो विद इन 2 मिनट्स यू हैव चेंज्ड और आप एक गर्म कपड़े में आके, आपको कोई भगवान आके गरम गरम चाय पिला देता है। ऊपर से अगर बारिश पीछे से आ रही है तो इट इज स्टिल फाइन, आपको डायरेक्ट नहीं लग रही, बट अगर आपको सामने से बारिश आ रही है एंड यू आर गोइंग एट अ स्पीड, तो वो एकदम सुई की तरह चुभती है। अब आप आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तो आप देखोगे क्या, तो विजिबिलिटी वैसे ही पुअर है क्योंकि बारिश हो रही है, उसमें आप जो बचा कुचा दिख रहा है वो भी आप पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि बारिश का पानी आपको आंखें खोलने ही नहीं दे रही। तो आप मतलब ऐसा था कि 15 सेकंड आप ऊपर देखोगे फिर नीचे देखोगे, उस तरह से हमें 4 घंटे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था।
1: तब मेजर प्राजक्ता, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि जैसे अगर हवा आ रही है सामने से बहुत तेज आ रही है तो आपको शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, लंबा रास्ता भी तय करना पड़ा होगा, तो इस तरह की भी आपने समस्या देखी?
3: हमारी बोट चलती ही सिर्फ विंड पावर पे, तो हम अपना डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज ही करना पड़ता था। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत नॉटिकल माइल्स दूर चले गए हैं अपने जहाँ पे हमने पहुंचना है एग्जैक्ट वे पॉइंट से, तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कभी उल्टा भी निकल गए बिकॉज हवा ही नहीं है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट फिर हम कुछ कर नहीं सकते। उस
0: एक्सट्रीम देखा है हमने, एक्सट्रीम मतलब 0 हवा भी देखी है, जैसे इन्होंने बताया कि हम पीछे जा रहे हैं, पानी हमको पीछे धकेल के ले गया, और हमने 60 knots ऑफ विंड मतलब ऑलमोस्ट 100+ किलोमीटर पर आर का विंड भी देखा जब हमारी बोट ऑलमोस्ट पानी के अंदर जाने वाली थी, तो और मतलब एकदम इतनी गर्मी भी देखी है कि हम सब एकदम पसीना पसीना, और इतनी सर्दी भी देखी है कि हम हमारे हाथ जम गए।
3: ये गर्मी और सर्दी वाला मैं आपको जस्ट एक्सट्रीम का, आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल दिस थिंग, सदर्न ओशन में जब हम थे, मैम ने जैसे बताया इतनी ठंडी थी कि हमारे बोन्स तक दर्द होने लग जाते थे। आई हैव सर्वड इन 3rd stage हाई ऑल्टीट्यूड, उधर भी बहुत ठंडी होती है। आई हैव सर्वड इन लद्दाख, वहां पे मैंने ठंड देखी है, बट वो ठंड मेरे को बहुत कम लगी कम्पेयर टू व्हाट वी विटनेस्ड हियर।

0: एंड एक्सट्रीम गर्मी का मैं बताऊं, हमारे लिए पाउडर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया था. हम गले से लेके एंकल तक सिर्फ पाउडर में ही होते थे.
1: आप बताएं एज क्वार्टर लीडर वैशाली की, बट नाउ वुमेन आर दे आर अनस्टॉपेबल. ठीक है, तो बीइंग अ वुमन, व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू फेस्ड?
2: मैं फ्रेंकली ये बताना चाहूंगी, नॉट टू एग्जैजरेट, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसी कोई डिफिकल्टी आई है. जो मैंने लड़कों को करते हुए देखा है वही एग्जैक्ट चीज हमने करी है. हाँ, अगर मैं पहले से ये बना के चलती कि मैं पीरियड्स में कैसे करूंगी, मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए और नहीं मुझे नहाना है, अगर इफ आई एम ट्रेन्ड इन दैट मेंटालिटी एंड इफ आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट मेंटालिटी, ऑब्वियसली इट बी इट सेलिंग और एनी अदर एक्टिविटी आई विल नेवर बी एबल टू डू इट. बट हम हमेशा से ट्रेन ही लड़कों के साथ हुए हैं, हम ट्रेन ही वैसे हुए हैं एज लाइक वी आर इक्वल. इट इज जस्ट अबाउट दैट मेंटल स्ट्रांगनेस टफनेस विच वी से, वो हमने कंटिन्यू रखी.
1: विंग कमांडर, जैसे आप लोग वायुसेना से हैं, आप थल सेना से हैं, तो वहाँ का भी जो कुछ अनुभव आपके सेलिंग के दौरान काम आया हो, एक्सपेडिशन में काम आया हो?
3: अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो अनडाउटली इंडियन नेवी का पानी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उन्होंने मैं काफी हेल्प की, गाइड किया कैसे करना है क्या करना है. इंडियन आर्मी का अगर कहेंगे तो भारत में जो सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो इंडियन आर्मी से ही हुई थी. पहला जो दुनिया का चक्कर लगा के बोट आई थी वो इंडियन आर्मी की ही थी, तो इंडियन आर्मी के पास वो एक्सपीरियंस भी था. और अगर हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो जो जिस तरीके का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग इनकी होती है, अनडाउटली वो हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमें उसी तरीके से ट्रेन किया गया. ट्रेन इस तरीके से किया गया कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं. तो ये जो तीनों सर्विसेज का आपस में जो कोर वैल्यूज लेके टीम बना के गए थे, कहीं ना कहीं इन सब ने मिलके इस एक्सपीडिशन को सफल बनाया है.
1: तो जैसे इतने चैलेंजेस थे इस आपाधापी में, आपने क्या अपने परिवार वालों से बात की मेजर प्राजक्ता? मतलब ऐसा भी कुछ मोमेंट आया कि शायद अब याद आ रही है उनकी?
0: हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे बोट पे. एक तो था हमारे पास सैटेलाइट फोन था, एंड प्लस वी हैव समथिंग नोन एज फ्लीट ब्रॉडबैंड जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है. बट एक महीने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 GB डेटा होता था, एंड उसमें हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती थी, हमारी ऑल ओके रिपोर्ट या कुछ खराब हो गया उसका रिपोर्टिंग होती थी, एंड प्लस हम उस पर वेदर अपडेट लेते थे अपना. एंड फिर बचा हुआ कुछ टाइम हम अपने हर ऑफिसर को 5-5 मिनट या 10-10 मैक्सिमम मिल जाता था घर पे बात करने के लिए. बट ऐसे भी बहुत बार दिन हुए कि नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड बात नहीं हो पा रही है. तो रहा है, बहुत बार टाइम लगा है ऐसे कि यार घर वाले क्या सोच रहे होंगे, बट फिर उनको खुशी होती थी कि अगर कॉल नहीं आया, बिकॉज अगर कॉल आया और अगर हमने बोला कि आज ऐसा ऐसा हो गया तो उनको और टेंशन हो जाती थी. तो इट वॉज बेटर फॉर देम कि वी हैव नॉट गिवन देम अ कॉल.
1: तो आपने, विशाली जी, आपने कभी अपने पेरेंट्स से बात की और बताया कि आज ऐसा हुआ, आपका मन किया मैं बताऊं?
2: नहीं, बिल्कुल भी नहीं. What happens on the boat stays on the boat.
1: तो strong लेडी, मतलब ये है नारी शक्ति आज की नारी है, जो अपने एक्सपीरियंस को, अपने साहस को साथ लेते हुए अकेले लड़ना जानती है और अकेले चलना जानती है. टीम भावना जब हो तो उसके साथ सबको लेकर साथ चलते हैं. मतलब आपका पड़ाव भी था, जैसे पोर्ट कॉल कहते हैं, जिसको 4 देशों में रुका, तो उस दौरान क्या किया गया, कैसा आपको, क्योंकि आप ऐतिहासिक अभियान पर थी, तो उस समय कैसा गर्व की भावना आप में आई?
3: देखिए, पोर्ट ऑफ कॉल जो हमने हॉल्ट्स लिए थे, जैसा हमने आपको अपनी बोट के बारे में बताया कि लिमिटेड स्पेस है और एक्सपीडिशन बहुत लंबा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बोट के जो रिपेयर, रिप्लेनिशमेंट, राशनिंग एंड रेस्ट एंड रिकूप ऑफ द क्रू, ये चीजों को ध्यान में रख के हमने पोर्ट ऑफ कॉल्स लिए थे. अब वो जो पोर्ट ऑफ कॉल में जब आप जा रहे हैं, देखिए, जैसे हर भारतीय का सपना होता है कि जब आप अपने राष्ट्र ध्वज को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन 4 कंट्रीज में गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे आप अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट हमने अपनी लाइफ में फील नहीं किया. जैसे जब हम अर्जेंटीना में गए थे, वहाँ पे जो उनका नेवल बैंड था, उन्होंने हमारे लिए राष्ट्रगान बजाया था, और हम सब की आंखों में गर्व था और खुशी के आंसू थे कि आज हमने अपने राष्ट्र को दूसरे कंट्री में प्राउड फील कराया है. और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि भारत ऑफशोर सेलिंग जैसे इस तरीके के एक्सपीडिशंस में हमारे बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत कल्चर है. तो आप इंडिया से उनके कंट्री में जा रहे हो, और हमने किया ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज, तो वो जो लोग थे वो हक्के बक्के थे कि इंडिया में विमेन को पूरे दुनिया का चक्कर लगाने भेज दिया. तो वो जो एक स्टेटमेंट होता है ना कि

0: हम अपने कंट्री को एज अ वुमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो उनके देश ने भी नहीं की, वो अमेज थे। तो वो फीलिंग जो होती है कि आई एम अ इंडियन एंड आई एम हियर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, ये एक लाइफ लॉन्ग फीलिंग और एहसास है जो हम पूरी जिंदगी अपने साथ रखेंगे।
1: आपने ये एहसास उस समय फील किया, आप मुझे बता रही है, मतलब आई हैव गूज़बम्प्स कि आप सोचो आपको कितना अच्छा लगा होगा। और जैसे विशाली जी खुशी के आंसू कह रहे थे, मतलब खुशी के आंसू आए दर्द से और कठिनाई से चुनौतियों का सामना करते हुए, वो आंसू नहीं
2: उसके कभी नहीं।
1: नानी संदेश साहस का, आपने आत्मविश्वास का परिचय दिया इस अभियान में, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो मरीन पोल्यूशन को लेकर, आप बताएं मेजर प्राजक्ता किन किन बातों का ध्यान रखा?
3: सो मेनली हमारा जो वेस्टेज होता था वाज आप मान लो सैनिटरी वेस्ट वन, एंड मेजरली इट यूज टू बी हमारा फूड या जो भी हम पानी पी रहे हैं। तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर बॉटल्स होती थी तो हम उसको क्रश करते थे। एंड उसको हम हमारे पास अभी जब हम हर एक पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे तो हमारे पास 4 बड़े बड़े गार्बेज बैग्स भर जाते थे, क्योंकि हम फेंकते नहीं थे वो प्लास्टिक को पानी में। एंड जब हम पोर्ट ऑफ कॉल पे पहुंचते थे वहां पे हम डिस्पोज ऑफ करते थे।
1: तो ये बहुत बड़ा संदेश है मतलब सभी के लिए। जी वैशाली जी, 314 दिन लंबा आपका ये एक्सपीडिशन था, तो इस दौरान ऐसा कुछ मेमोरेबल आपका जो क्षण रहा हो, यादगार क्षण जो आप बताना चाहें?
2: बहुत सारे ऐसे दिन होते थे, वेदर खराब है, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ टूट गया है, कभी बादल है, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, वो लगातार चलता रहता था। तो जो मिजरी है ना वो इतनी कॉमन हो गई थी कि वो बुरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जिस दिन सूरज निकलता था और हवा बिल्कुल एप्ट जो बोलते हैं ना कि ना कम है ना ज्यादा है, जो एंजॉय करने लायक वो हवा है वो होती थी, वो मुझे याद है, वो सनसेट, वो हाथ में एक कॉफी और गाना, क्योंकि उस दिन धूप निकली थी तो हमारे पास पावर थी कि हम एक गाना सुन सके, वो एक 5-10 मिनट का जो टाइम था, और बोट बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रही है, वेदर खराब नहीं है, क्रैश नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही, वो दिन बहुत ही अच्छा यादगार दिन था और वो मेरे ख्याल से वो लाइफ लॉन्ग आगे जाएगा।
1: आपका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मोमेंट जो यहाँ रहा हो?
3: हम मैम और मैं दोनों साथ में ही थे उस टाइम पे, एंड दिस वॉज वेन वी वर कमिंग टू मुंबई फ्रॉम केप टाउन। एंड मॉर्निंग आई थिंक 5:30-6 o'clock की बात है, हमें होराइजन पे सनराइज होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन मे को आवाज आती है, बहुत कुछ तो उछल रहा है पानी में, और बहुत ही दूर है ये क्योंकि एकदम शांत है, हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो दूर हमने देखा ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉल्फिन्स, एक लाइन से हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ तो उछलता उछलता उछलता हमारे सामने से वो ऐसे निकले। दे आर प्रोबेबली माइग्रेटिंग, क्योंकि इतने सारे थे, हमने कभी इतने सारे देखे ही नहीं है।
1: सच अ
3: ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
1: तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि आप आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें?
0: मेरे हिसाब से ये कि जिंदगी में सपने देखना बहुत जरूरी होता है और सपने सच भी होते हैं, बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
1: विशाली जी, जो सरकार है वो महिला नेतृत्व विकास पर जोर दे रही है और वो हर फील्ड में दिख रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: लड़के लड़कियां, मैं सबके लिए मेरा एक ही संदेश है, फौज ज्वाइन करनी चाहिए, बी इट आर्मी नेवी और द एयरफोर्स, किसी को भी सर्व करो, यू सर्व द नेशन, यू कम, यू एक्सपीरियंस दिस। सो फॉर ऑल द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियां, एवरीवन, दे शुड ज्वाइन द फोर्सेस।
1: जी, आप क्या कहना चाहेंगे मेजर प्राजक्ता, आपके शब्द?
3: I would like to say कि success comes with hard work, perseverance and most importantly not having an ego. This is something which my father used to tell me and this has stayed with me because I have a letter जो उन्होंने मेरे को दिया था, and जब मैंने ये expedition start किया था तो मैंने वो letter लेके गई थी, and that is what kept me going through this entire
1: yes. मतलब अच्छा था आप लोगों का एक्सपीडिशन, आप लोगों की गाथा सुनने से निसंदेह सभी को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, उनको भी जो आगे अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आकाशवाणी से जुड़ी और अपने अनुभव हमसे साझा किए।
4: पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ऐतिहासिक समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का हिस्सा रही विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम के साथ विशेष बातचीत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के

0: माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: अभी आप सुन रहे थे बिहाइंड द स्टोरी प्रोग्राम, यह आकाशवाणी नागौर का सिर्फ चैनल है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
4: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14

कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.5 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्लीज़ सुनिए फिल्म संगीत की यह पहली पेशकश।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: यह फिल्म संगीत की अगली पेशकश। फिल्म का नाम मोहरा, आवाज कुमार शानू की है।

लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

ये कहा था, अभी आपने सुना, हमने लिया था फिल्म सैनिक से आवाज़ थी कुमार शानू की। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी नागौर का चिन्मय चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर। माटी के स्वर कार्यक्रम की यह पहली पेशकश आवाज़ ओम प्रकाश दादीच की है।

0: संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान। राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: यह है माटी का स्वर कार्यक्रम की अगली पेशकश, आवाज मनोज गौतम की है।

0: मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर, राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट को भी मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय। खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया। प्रदेश के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में युवा स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके काम की सराहना की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें यूसीसी ड्राफ्ट, राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाले ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों में रियायत और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के भूमि आवंटन नियमों में भी बदलाव संबंधी निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। श्री पटेल ने बताया कि राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 यानी यूसीसी का मसौदा मंजूर कर दिया गया है। श्री पटेल ने कहा कि इस प्रस्तावित मसौदे के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लेवन संबंधी मामलों में पूरे राज्य में एक समान कानून लागू किए जाएंगे। हालांकि आदिवासी समुदाय के पारंपरिक रीति रिवाजों और संस्कृति की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
1: इसमें मुख्य रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
0: राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत खेजड़ी, रोहिड़ा और पीपल सहित कुल 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। श्री पटेल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य रेगिस्तान के विस्तार को रोकना और हरित आवरण बढ़ाना है।
1: इसमें पेड़ों को काटने, उखाड़ने, गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। पिछले कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है, जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े। इसीलिए खेतों की मांड पर, खाली स्थानों पर, स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ लगाने का क्रम किया है। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र, जो वन हमारा आरक्षित है, उसे अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े।
0: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवा नियम 1951 में संशोधन किया गया है। मृत सरकारी कर्मचारियों की पुत्र वधु को भी अब अनुकंपा नियुक्ति का फायदा मिल सकेगा। सरोगेट माताओं को 90 दिन का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सभी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुभव की शर्त में 2 साल की छूट मिल सकेगी। वहीं एकल महिलाओं को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव अब 3 की बजाय 6 चरणों में दी जाएगी।
1: कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार के विभागों

0: संस्था उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव एक वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी।
1: पीएचईडी मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के निर्णय को लेकर ग्राम जल स्वच्छता कमेटी बनाई गई थी। इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इससे संबंधित प्रावधानों का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। राज्य के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली गई। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाली गई इस लॉटरी प्रक्रिया के साथ ही आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। जयपुर स्थित मुख्यालय में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में ये लॉटरी निकाली गई। इसके अनुसार 309 शहरी निकायों में 50 पद अनुसूचित जाति, 11 जनजाति और 60 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 188 निकायों के प्रमुख पद अनारक्षित रखे गए हैं। अनारक्षित पदों पर किसी भी वर्ग के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुला रहेगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगमों में महापौर का पद अनारक्षित रखा गया है। वहीं कोटा नगर निगम का मेयर पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व किया गया। अजमेर और भरतपुर में महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। वहीं नए बने नगर निगम भीलवाड़ा, अलवर और पाली में भी महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए रखा गया है। मीडिया से बातचीत में स्वायत्त शासन मंत्री श्री खर्रा ने बताया कि समय की कमी के बाद भी इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया गया है।
2: समय की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, क्योंकि एक बार SIR हो गया और दूसरी बार प्रयास शुरू हुआ तब जनगणना का काम शुरू हुआ। 6 नगर निगमों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित हुए हैं। 60% आरक्षण महिलाओं को मिला है नगर निगम मेयर के लिए।
1: प्रमुख शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि इस बार आरक्षण तय करने में पारदर्शी प्रक्रिया और रोटेशन फॉर्मूले पर विशेष ध्यान रखा गया।
3: पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियां निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और ये जो प्रक्रिया हो गई है इसके बाद में सभी 309 ULBs में ये स्थिति साफ हो गई है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी, किस वर्ग का प्रत्याशी, ये सभी आज क्लियर हो गया है।
1: निकाय प्रमुखों के आरक्षण के बाद अब 17 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। जिलों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 100 से अधिक कलाकारों को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में हुए समारोह में वर्ष 2024-2025 के लिए ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य कला रूपों के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार कलाकारों की प्रतिभा और समर्पण को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
4: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जयपुर में युवा स्टार्टअप और उद्यमियों के साथ संवाद किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में श्रीमती सीतारमण ने राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यहां के स्टार्टअप फाउंडर्स और युवा उद्यमियों को वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था के बारे में पूरे देश के समक्ष बात करने का अवसर मिलना चाहिए।
5: राजस्थान सरकार के द्वारा इतने अच्छा प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को मिल रहे और आए थे ऊपर डायस में 25-30 स्टार्टअप जिनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान

0: सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि ऐसे एक इनिशिएटिव लिए जहां अभी राजस्थान भी इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम में एक बड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं। ये विषय को हम बार बार बोलना चाहिए, पूरे देश में बोलना चाहिए, सभी जगह राजस्थान के स्टार्टअप्स को एक मौका मिलना चाहिए उनका अपना काम के ऊपर विस्तार से बोलने के लिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए इधर के युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल क्रांति के महत्व पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच करवाई जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही इस पहल से लगभग 75,000 जरूरतमंद विद्यार्थियों को चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि बच्चों में दृष्टि संबंधी समस्याओं का शुरुआती स्तर पर इलाज बहुत जरूरी है। कमजोर दृष्टि के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसी सोच के साथ आंखों की जांच और निःशुल्क चश्मा वितरण की ये मुहिम शुरू की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट को भी मंजूरी। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लाने का निर्णय। खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया। प्रदेश के 309 शहरी निकायों और 41 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में युवा स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद कर उनके काम की सराहना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। लंबे अरसे के इंतजार के बाद जैसलमेर में मॉनसून ने दस्तक दी है। अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई, इससे गर्मी और उमस से तो लोगों को राहत मिली है। वहीं खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए भी ये बारिश उपयोगी साबित हो रही है। नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों में पानी की आवक से पशुपालकों को भी राहत मिली है। गड़ीसर सरोवर में पानी आने से नौकायन से जुड़े लोगों में भी उत्साह का माहौल है। इस बीच हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस बार जिले में 46,95,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वन विभाग को 32,53,000, पंचायती राज विभाग को 4,12,000, शिक्षा विभाग को 4,52,000 और UIT को 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। वन विभाग ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे अपनी नर्सरियों में तैयार किए हैं। मरुधारा की धरोहर नगरी जैसलमेर विकास के एक नए अध्याय की साक्षी बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं, आकर्षक वास्तुकला, बेहतर यातायात प्रबंधन और विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाओं के साथ किया गया है। लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर रेलवे स्टेशन के मेगा रीडेवलपमेंट और उसके उद्घाटन के बाद अब स्टेशन को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 110 करोड़ रुपए से अधिक की नई परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन रेलवे की गतिशक्ति यूनिट द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के लिए गर्व और गोडावन संरक्षण अभियान के लिए एक ऐतिहासिक पल सामने आया। रामदेवरा स्थित गोडावन संरक्षण केंद्र में नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण पूरा होने के बाद पहली बार 3 नन्हे गोडावन चूजों को इस विशेष टनल में छोड़ा गया है। ये केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश में गोडावन संरक्षण की दिशा में नई शुरुआत और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। अब तक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में तैयार होने वाले गोडावण के चूजे इंसानों की देखरेख और संपर्क में बड़े होते थे। ऐसे में जब उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाता था तो प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप

0: खुद को ढालना उनके लिए चुनौती बन जाता था। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक रीवाइल्डिंग टनल का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश भर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम से जैसलमेर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम में माय भारत के युवा स्वयंसेवक और युवा मंडल के सदस्य जुड़े। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक गतिविधि, घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का विशेष ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। जैसलमेर से सटी सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाते हुए जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये विशेष अभियान 17 अगस्त तक जारी रहेगा। जैसलमेर के रेगिस्तानी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में बीएसएफ ने चौकियों पर जवानों की न केवल तैनाती बढ़ाई है बल्कि अग्रिम चौकियों पर नफरी को दोगुना कर दिया है। पारंपरिक रूप से कैमल पेट्रोलिंग और पैदल गश्त में भी इजाफा किया गया है। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सीमा पर तकनीकी निगरानी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। रात के समय सीमा पार से होने वाली किसी भी हलचल पर नजर रखने के लिए नाइट विजन डिवाइस, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर का उपयोग किया जा रहा है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय किशोर दिवस के अवसर पर किशोर किशोरियों से संबंधित स्वास्थ्य विषयों, एनीमिया, प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और मानव प्रबंधन करने के साथ साथ स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक के निर्माण के लिए जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट नई मंजूरी। पर्यावरण ने बचावन सारू राज्य में वृक्ष संरक्षण बिल 2026 लावण रो फैसलो। खेजड़ी समेत 29 भांतरा रूखड़ा संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव। प्रदेश रा 309 शहरी निकाया और 41 जिला परिषदा रा अध्यक्ष ओहदा सारू आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर में राखी जिया यूथ कॉन्क्लेव में नौजवान स्टार्टअप कारोबारियों बातचीत की ने। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत में आज राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग राखी जी। इनमें समान नागरिक संहिता यूसीसी रो मसौदो और राज्य वृक्ष खेजड़ी समेत दूजा रोखणा री गैर कानूनी और अंधाधुंध कटाई ने रोकण सारू ट्री प्रोटेक्शन बिल 2026 रा करड़ा प्रावधान रा मसौदा ने मंजूरी दी री जी। इस आगे सरकारी कर्मचारियां रा सेवा नियमा में रियायत और अक्षय ऊर्जा परियोजना सारू जमी आवंटन रा नियमा में बदलाव जुड़िया फैसला ये करी चिया। मीटिंग पाछे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी खबर नवीसा ने मीटिंग में लिया जा फैसला री जानकारी दीनी। श्री पटेल बतायो कि राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल 2026 यूसीसी रा मसौदा ने मंजूरी दे दी रिची है। मसौदा रा तेत ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन जुड़िया मामला में राज्य में एक सरीखा कानून लागू करिया जावेला। हालांकि आदिवासी समुदाय ने यूसीसी रा दायरा में शामिल नहीं करण रो प्रस्ताव है।
2: इसमें मुख्य रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस तथा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इन प्रावधानों के अनुसार सभी धर्मों और समुदायों को अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, निकाह, आनंद कारज, होली यूनियन आदि के अनुसार विभिन्न संपन्न कराने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। कानून लागू होने के बाद संपन्न होने वाले सभी विवाह को 60 दिनों के भीतर भीतर उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन संबंधों की शुरुआत तथा उसके समापन की लिखित सूचना रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
1: इस आगे राज्य में पर्यावरण ने बचावन सारू

0: वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 लावन रो फैसलो ही करी चियो। इन तेत खेजड़ी रोहिड़ा और पीपल समेत 29 भांतरा रूखड़ा ने संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव करी चियो है।
1: इसमें पेड़ों को काटने, उखाड़ने, गिराने की पूर्ण प्रभावी रोकथाम रहेगी और विशेष परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि रेगिस्तान के विस्तार को रोकें, जैव विविधता को बचाने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर को भी कम करें। इसलिए कैबिनेट में हमने एक नीति को मंजूरी दी है जिसमें हमने कहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में और फॉरेस्ट बढ़े, इसीलिए खेतों की मांड पर, खाली स्थानों पर, स्कूल के ग्राउंड के चारों तरफ पेड़ लगाने का क्रम किया है। और इसमें ये उद्देश्य मूल यही है कि हमारा वन क्षेत्र, जो वन हमारा आरक्षित है, उसके अलावा भी वन क्षेत्र बढ़े।
0: उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा खबर नवीसा ने बताया कि कैबिनेट री मीटिंग में राज्य में सरकारी सेवावां सारू सेवा नियम 1951 में बदलाव री मंजूरी दी री जी। इन तेत गुजर चुकिया सरकारी कर्मचारियां रा बेटा री बहु नई सरकारी कर्मचारी री मौत री सूरत में अनुकंपा नियुक्ति रो फायदो देवन रो प्रस्ताव है। कोख में दूजारो बालक पालवा वाली मायणा ने 90 दिन रो मातृत्व अवकाश देवन रो प्रस्ताव ही मंजूर करी चियो। सगली सरकारी सेवावां माय तरक्की सारू अनुभव री शर्त माय 2 साल री छूट देवण और एकली महिलावां न मिलण वाली चाइल्ड केयर लीव अब 3 री बजाय 6 दौर माय दी जावेला।
2: कर्मचारी कल्याण की भावना से राजस्थान सेवा नियम 1951 में 3 संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अब राजपत्रित पद पर नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में पद त्याग करने पर कार्मिकों से केवल प्रशिक्षण व्यय की वसूली होगी, उसे वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। वह राज्य या केंद्र सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों में नई नियुक्ति के फलस्वरूप पद त्याग करने पर प्रशिक्षण के दौरान भुगतान किए गए वेतन भत्तों के साथ साथ प्रशिक्षण व्यय की भी कोई वसूली नहीं की जाएगी। इसके अलावा एकल महिला राज्य कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव 1 वर्ष कैलेंडर वर्ष में 3 के स्थान पर 6 चरणों में अब उसको स्वीकृति दी जा सकेगी।
0: जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बतायो कि हर घर नलों जल पुगावन रा फैसला रा बारा माय ग्राम जल स्वच्छता कमेटी बनाई ची ही चिंद्रा मकसद न पूरो करण सारू इनु जुड़िया प्रावधाना नई मीटिंग माय मंजूरी दी री ची। राज्य रा 309 शहरी निकायां और 41 जिला परिषदां रा अध्यक्ष ओहदा रा आरक्षण री लॉटरी आज निकाली ची। स्वायत्त शासन विभाग री ओर निकाली ची लॉटरी प्रक्रिया सा गई। आवता स्थानीय निकाय चुनाव जुड़ी स्थिति साफ की है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा री मौजूदगी माय जयपुर माय निकाली ची लॉटरी रे मुजब 309 शहरी निकाया माय 50 ओहदा अनुसूचित जाति, 11 जनजाति और 60 अन्य पिछड़ा वर्ग सारू आरक्षित राखी ची है। 188 निकायां रा प्रमुख ओहदा आरक्षित नी रखी गया है और वह किणी तबका रो उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेला। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम माय महापौर रो ओहदो अनारक्षित रखी चियो है। कोटा नगर निगम रा मेयर ओहदा सारू अन्य पिछड़ा वर्ग री महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेला। नुआ वणाईजिया नगर निगम, भीलवाड़ा, अलवर और पाली सागे, अजमेर और भरतपुर माय महापौर ओहदा सारू अनारक्षित वर्ग री महिला ही चुनाव लड़ सकेला। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा खबर नवीसा ने बतायो कि समय री कमी रे बावजूद वो काम बेगम बेगो पूरो करण री कोशिश करी ची।
3: अभी समय की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, क्योंकि एक बार SIR हो गया और दूसरी बार प्रयास शुरू हुआ तब जनगणना का काम शुरू। 6 नगर निगमों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित हुए हैं। 60% आरक्षण महिलाओं को मिला है नगर निगम मेयर के लिए।
0: प्रमुख शासन सचिव रवि जैन बतायो कई दफा आरक्षण तय करण माय साफ सुथरी प्रक्रिया और रोटेशन फॉर्मूला रो ध्यान रखी चियो।
4: पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियां निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और ये जो प्रक्रिया हो गई है इसके बाद में सभी 309 ULBs में ये स्थिति साफ हो गई है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी किस वर्ग

0: का प्रत्याशी, ये सभी आज क्लियर हो गया है।
1: निकाय प्रमुख ओहदारा आरक्षण पाछे अब 17 अगस्त ने वार्डा रा आरक्षण री लॉटरी निकाली जावेला। जिला माए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकावां रा वार्डा रो आरक्षण जिला कलेक्टर रा लेवल माथे करियो जावेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 192 कलाकारां ने केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी री छात्रवृत्तियां और पुरस्कार तीना। नई दिल्ली माए भया जलसा माए साल 2024-25 सारू संगीत, नृत्य, रंगमंच और कला रा दूजा रूपा सारू इनाम दिया चिया। ई मौके राष्ट्रपति कहो के इनाम कलाकारां री प्रतिभा और समर्पण ने बतावे है। वह कहो के कलाकार देश री समृद्ध संस्कृति ने बचार राखण माए मोटो काम कर रिया है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए है वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जयपुर में युवा स्टार्टअप और कारोबारियों सागे बातचीत कीनी। इस मौके श्रीमती सीतारमण कहो कि राजस्थान में स्टार्टअप री शुरुआत करने वाला और नौजवान कारोबारियों ने वित्तीय समावेशन और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था रे बारे में पूरा देश सामी बात करने रो मौको मिलनो चाहिए।
3: राजस्थान सरकार के द्वारा इतने अच्छा प्रोत्साहन स्टार्टअप्स को मिल रहे और आए थे ऊपर डायस में 25-30 स्टार्टअप जिनको अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बधाई देना चाहती हूं कि ऐसे एक इनिशिएटिव लिए जहां अभी राजस्थान भी इंडिया इनोवेशन इकोसिस्टम में एक बड़ा सा रोल प्ले कर रहे हैं। ये विषय को हम बार बार बोलना चाहिए, पूरे देश में बोलना चाहिए, सभी जगह राजस्थान के स्टार्टअप्स को एक मौका मिलना चाहिए उनका अपना काम के ऊपर विस्तार से बोलने के लिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए इधर के युवा इतना अच्छा काम कर रहे हैं।
1: केंद्रीय वित्त मंत्री ने मजबूत बनावन सारू डिजिटल क्रांति माते ही जोर दिनो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद हा। वित्त मंत्री एक गैर सरकारी स्कूल में राखी जिया तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल थी। स्वतंत्रता दिवस रे मौके बीकानेर में राख्या जावन वाला राज्य स्तर रा जलसा सारू सगली तैयारियां पूरी फेंकी है। जिला कलेक्टर निशांत जैन बतायो कि स्वतंत्रता दिवस री पहली वाली सिंजा काल खास ड्रोन शो राख्यो जावेला जिनमें एक के सागे 600 ड्रोन उड़ाया जावेला। आरे जरिए कला संस्कृति रीति रिवाज और राष्ट्रीय भावनाओं जोड़ी सोहनी आकृतियां बनाई जावेला। इन बीच हर घर तिरंगा अभियान रा तहत राज्य में भांत भांत रा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। 12 अलवर, जोधपुर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर और चूरू में तिरंगा यात्रा में निकाली ची। आखिर में खास समाचार एक और फेरु सुन ली रहो। राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। राजस्थान यूसीसी ड्राफ्ट नई मंजूरी। पर्यावरण ने बचावन सारू राज्य में वृक्ष संरक्षण बिल 2026 लावन रो फैसलो। खेजड़ी समेत 29 भांतरा रूखड़ा संरक्षित श्रेणी में राखण रो प्रस्ताव। प्रदेश रा 309 शहरी निकायां और 41 जिला परिषदां रा अध्यक्ष ओहदां सारू आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जयपुर माए राखी जिया यूथ कॉन्क्लेव माए नौजवान स्टार्टअप कारोबारियों बातचीत कीनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
4: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है, कुछ पलों में आप सुनेंगे एक कार्यक्रम किसानवाणी जिसे हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनवा वाला सगला हेतालु श्रोताओं ने जगह दूर दराज गांव ढाणी रे मायने बैठे हुआ वो कार्यक्रम सुने है। आप सगला हेतालु ने गणे मानसु प्रभु दयाल वर्मा रो राम राम एर निवन प्रणाम सा, और सागे सागे मनसुनी बहन थाने भी मोकलो मोकलो राम राम सा।
7: खूब खूब राम राम प्रभु भाई सा, और किसान वाणी कार्यक्रम री बाट उड़ीकता हेतालु श्रोता गणा ने थाकी बहन मनसुनी रो स्नेह भरो राम राम सा।
6: काई हाल चाल मनसुनी बहन?
7: हाल चाल तो गणा ही चोखा है भाई सा।
6: और देखो आप बात करा के भाई सेवा सेवा सु मेवा मिला अपना माइत है या किया करे है, और बड़ा बुजुर्ग भी आ बात किया करता, और ई वास्ते महापुरुष भी क्यों गए भाई सेवा है सब सु सिरे सर्व सुखों का मूल, दुख छुटे पातक मिटे चितकी भागे भूल, चितकी भागे भूल घना गुण ऊंचा पावे और देवे आदर दान भलाई सबकी चावे, होत नीच से ऊंच अनंत ही पावे मेवा, राम बख्श हरि भक्त करो सबकी सेवा। मनसुनी बहन सेवा सु मेवा मिले, और महापुरुष आई बात की भाई प्रकृति के मायने जता भी जिया जून है, चाहे रूकड़ो हुए चाहे अपनी धरती माँ हुए चाहे इंसान के प्रति अपने दिल रे मायने हमेशा सेवारो भाव होनो जोईजे।
7: भाई सा ते दोहा के माध्यम सु घनी ही मोटी बात कया हो सा कि सेवा ही आपने जीवन रो परमो धर्म है।
6: और सेवा की अगर आप बात करा तो देखो प्रकृति ने बचावन री जी की आपनो जज्बो है, वह भी एक सेवा के मायने आवे। आप रूकड़ा लगा सका देखो वार बिरखारी ऋतु चलन लाग रही है, अस्यारे मायने आप रूखा के माध्यम से सेवा कर सका। हाँ कोई आदमी के कने धन है तो देखो वो धन सु सेवा कर सके, कोई के कने ज्ञान है तो वो ज्ञान सु सेवा कर सके, बांट सके है, समाज ने एक सकारात्मक संदेश दे सके है।
7: भाई साहब पर यो जो सेवा रो धर्म और ज्ञान है, सेवा री जो सीख है कि आपने सेवा करनी चाहिए, या जो आपनी वाली पीढ़ी है या तो समझे है, लेकिन आपना जो आवाली पीढ़ी टावर टीगर है आ तक भी आपने ई सीख ने ई सेवारी जो अलग है इन्हे आपने पुगानी है सा।
6: बिल्कुल पुगानी है। देखो पुराना टाइम का मायने जगह माइता का कनजिया टाबरिया है बननिया लिखनिया है या और आपने दादी है नानी है या कोई घर के मायने जगह बुजुर्ग होता वहां कने वे बैठता जना देखो बटू खाणिया के माध्यम से वहां के मायने संस्कार भरिया जाता है, और वे संस्कार है मानवीय मूल्य है, वे एक अच्छा नागरिक बनबा के वास्ते आगे चादर खटे न खटे वे काम आता। पण देखो आधुनिक जो दौर है ना मनसुनी बहन, एक मायने जहाँ मोबाइल को दौर है तकनीक को दौर है वो जरूरी है, एक मायने आगे बढ़बा के वास्ते तकनीकी है जिसको इस्तेमाल अपन करना चाहिए, पण देखो अपना जगह संस्कार है अपना रीति रिवाज अपनी परंपरा है बन भी अपन नहीं बोलना चाहिए।
7: और सेवा के माध्यम से आपा अपना संस्कार रो तो संरक्षण करा ही, वीके सागे सागा अपनी जो पुरानी धरोहर है जो भी अपना बड़का बसार गया है जी अपना खेत होगा।

0: अपनी बावड़ियां हैं, अपना तालाब है गांवरा, तो आंको भी कुआं के पाल रो, आंको सगड़ा को आपा सलमिल संरक्षण करा, यो भी एक अपनी प्रकृति री सेवा रो माध्यम है।
1: बिल्कुल, देखो अपना पुराना जगह कुआ बावड़े की आप बात करने लाग रहे हो, बन ये टाइम के मायने अगर आपको संरक्षण करा बन बचावा पाश्चात्य के मायने पानी भेड़ो उसके तो विश्व देखो एक तो वो फायदो अपन उसके मनुष्य निवेण के भूमिगत जगह जल स्तर ने वो पाछो आप ऊपर लिया कहाँ बांगो संरक्षण कर विश्व अपना कुआ बेबावड़ी है प्राचीन जगह चीजा है पुरानी गांव का मायने है या खटे शहर का मायने है तो वह अपनी बचेड़ी भी रेजे वाली आबा वाली जी की पीढ़ियां है भाई बन देख पावली के देखो पुराना टाइम की ये चीजें बचेड़ी है और भी के सागे सागे आप प्रकृति की सेवा ई भात कर सका हाँ कि पानी को जो गिरतो हुए जल स्तर है बिना आप पाछो ऊपर लिया कहा।
0: भाई साहब यो तो आपा बात करया घनी चोखी, अब आपने कार्यक्रम में ले चाला जानकारी री और।
1: किसान भाई और बिना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुकिया है रेशमा यादव जी, आप रिसर्च स्कॉलर है मंडा भिंडा चोमू जयपुर सो कार्यक्रम का मैंने पधारिया है और आज आपने जानकारी देवला आधुनिक कृषि में डिजिटल तकनीक को उपयोग विषय पर। तो सांसू पहले तो रेशमा यादव जी था कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है सा, राम राम सा।
2: राम राम सा। किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो खेती के पुराने अनुभव और आधुनिक तकनीक को आपस में जोड़ता है। आज का हमारा विषय है आधुनिक कृषि में डिजिटल तकनीक का उपयोग। भाइयों और बहनों, आज का समय डिजिटल तकनीक का समय है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल ऐप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आज किसान केवल खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि वह मौसम की जानकारी लेने वाला, बाजार भाव देखने वाला, ऑनलाइन कृषि सलाह प्राप्त करने वाला और नई तकनीकों को अपनाने वाला आधुनिक कृषि उद्यमी बन चुका है।
1: अब सांसों के लिए आपसे आई बात जानना चाहूंगा कि खेती के संदर्भ में अगर आप डिजिटल इस शब्द की अगर बात करा तो डिजिटल खेती है कहीं के विषय में थोड़ा सा किसान मायंदे बताओ सा।
2: जी हाँ, सरल भाषा में कहे तो खेती से जुड़े निर्णयों और कार्यों में मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कृषि ऐप जैसी तकनीकों का उपयोग करना ही डिजिटल कृषि है।
1: और डिजिटल कृषि के संदर्भ में बात करा तो किसान भाई ने कौन कौन सी सेवाएं है जो कि ई खेती के मायने मिल सके है।
2: पहले किसान मौसम को जानने के लिए आसमान देखकर अनुमान लगाता था, मंडी में फसल ले जाने के बाद ही कई बार भाव का पता चलता था। किसान रोग या कीट की पहचान के लिए विशेषज्ञ तक पहुंचना कठिन होता था, लेकिन आज मोबाइल फोन के माध्यम से किसान मौसम का पूर्वानुमान देख सकता है, मंडी भाव जान सकता है, फसल में रोग और कीट की जानकारी प्राप्त कर सकता है, कृषि विशेषज्ञ से ऑनलाइन सलाह ले सकता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, साथ ही साथ ऑनलाइन कृषि सामग्री और सेवाओं के बारे में भी जान सकता है तथा अपनी उपज के बेहतर विपणन के विकल्प तलाश कर सकता है। यानी मोबाइल फोन किसान के लिए एक तरह से चलता फिरता कृषि सलाह केंद्र बन गया है।
1: डिजिटल तकनीक किसान ने की प्रकार से मौसम के संदर्भ में लाभ दे सके है।
2: जी हाँ, मौसम की जानकारी खेती के लगभग हर चरण में उपयोगी है। बुआई से पहले किसान वर्षा की संभावना देखकर निर्णय ले सकता है, फसल की अवस्था में सिंचाई की योजना बनाई जा सकती है, वर्षा, तेज हवा, ओलावृष्टि की संभावना होने पर किसान आवश्यक सावधानी बरत सकता है। इसी तरह किसान कटाई के समय भी मौसम का पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बारिश की संभावना हो तो किसान समय रहते कटाई और उपज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि किसान भाई हर दिन या कम से कम महत्वपूर्ण कृषि कार्यों से पहले मौसम की विश्वसनीय जानकारी अवश्य देखे ताकि वो होने वाले नुकसान से बचाव कर सके।
1: जी, फसलों के मायने कई प्रकार का जगह कीट और रोग लगे तो कहीं डिजिटल तकनीक से किसान भाई फसल के मायने लागवा वाला जगह कीट और रोग है वहां की पहचान भी कर सकेगा।
2: जी हाँ, डिजिटल माध्यम इस क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी हो रहे हैं। किसान फसल में दिखाई देने वाले लक्षणों की स्पष्ट फोटो लेकर कृषि विशेषज्ञ, कृषि विभाग या विश्वसनीय डिजिटल कृषि सेवा के माध्यम से सलाह प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतना जरूरी है, केवल इंटरनेट पर देखकर स्वयं दवा का निर्णय लेना हमेशा उचित नहीं है। कई रोगों और कीटों के लक्षण कई बार एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, इसलिए फोटो या डिजिटल जानकारी को ओनली प्रारंभिक सहायता के रूप में ले और आवश्यक होने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले।
1: और ये तकनीकी अगर आप बात करें तो सिंचाई के संदर्भ में किसान भाई ने डिजिटल तकनीक को कहीं

0: फायदे मिल सके हैं।
1: इसमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, आधुनिक कृषि से सेंसर, मोबाइल की जानकारी और स्वचालित सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे पानी की आवश्यकता होने पर ही सिंचाई की जाती है, जिससे पानी का बचाव किया जा सकता है। छोटे किसान भी इसका सरल रूप अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए किसान मिट्टी की नमी, फसल की अवस्था और मौसम को ध्यान में रखकर सिंचाई का निर्णय ले सकता है। इससे अनावश्यक सिंचाई कम की जा सकती है, पानी की बचत हो सकती है और फसल को आवश्यकता के अनुसार पानी मिल सकता है। याद रखिए, जितना पानी जरूरी है उतना पानी ही देना आधुनिक कृषि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
0: ड्रोन को उपयोग आजकल किसान भाई है खेती के मायने करे है, तो इस संदर्भ में आपसे आप बात जानना चाहूंगा, ड्रोन है कहीं और खेती के मायने को किस प्रकार से किसान भाई उपयोग कर सके है?
1: जी, ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो खेत का ऊपर से निरीक्षण करने में मदद कर सकती है। बड़े स्तर पर ड्रोन का उपयोग फसल की निगरानी, खेत का सर्वेक्षण और कुछ परिस्थितियों में पिड़कनाशी का छिड़काव जैसे कार्यों में भी किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। हालांकि छोटे किसान के लिए व्यक्तिगत रूप से ड्रोन खरीदना जरूरी नहीं है, जहां कस्टम हायरिंग सेंटर या सेवा के रूप में ड्रोन उपलब्ध हो वहां किसान सामूहिक या किराए की सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
0: जी, और आप बात करा कि भाई बाजार के संदर्भ में किसान भाई आपकी उपज ने लेर जावे तो कहीं डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसान भाई बाजार की जानकारी भी प्राप्त कर सके है?
1: जी, यह डिजिटल कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान अपनी फसल बेचने से पहले विभिन्न मंडियों के भाव की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे यह समझने में मदद मिल सकती है कि उसकी उपज का बाजार में क्या मूल्य चल रहा है। लेकिन केवल एक भाव देखकर निर्णय लेना सही नहीं है, किसान को गुणवत्ता, परिवहन खर्च, मंडी शुल्क, स्थानीय मांग और वास्तविक बिक्री मूल्य जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। डिजिटल जानकारी का उद्देश्य किसान को बाजार में अधिक जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।
0: ऑनलाइन सरकारी की योजनावां है, बाकी जानकारी अगर किसान भाई लेना चाहो तो बिक के मायने की प्रकार से डिजिटल तकनीक है जो कि किसान भाई के वास्ते फायदेमंद उसके है?
1: जी हाँ, आज केंद्र और राज्य सरकारों की अनेक कृषि योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है। किसान अपने मोबाइल के माध्यम से योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और स्थिति जैसी जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी बरतना जरूरी है। किसान भाई किसी भी योजना के लिए आवेदन करते समय केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करे। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक पासवर्ड या अन्य जानकारी साझा न करे।
0: हर किसान भाई चाहे कि भाई मैं खेती के मायने मारी लागत है वह तो कम से कम हुए, लाभ मन ज्यादा मिले, तो किसान भाई की खेत की जी लागत है वह कम करवा के मायने भी अपनी जी डिजिटल खेती है या तकनीक है वह किसान भाई ने की प्रकार से मदद कर सके है?
1: जी, तकनीक का उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है, इससे किसान की लागत कम हो सकती है। लेकिन तकनीक का उपयोग सही तरीके से करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, मौसम की जानकारी से अनावश्यक सिंचाई या कुछ कृषि कार्यों को गलत समय पर करने से बचा जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार कृषि आदानों का उपयोग करने में सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार बाजार के भाव की जानकारी से किसान को अपनी उपज के विपणन संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सकती है कि उसको किस समय पर और किस मंडी में उसको अपना सामान बेचना है। डिजिटल तकनीक सीधे सीधे लागत कम करने की गारंटी नहीं देती, लेकिन बेहतर निर्णय लेने में मदद करके लागत और जोखिम को कम करने का अवसर देती है।
0: और अपना देश तो गांव को देश है, गांव को जी आप बात करें कि कम पढ़े लिखे कोई किसान है, कोई भाई लोग है और वो ये डिजिटल तकनीक को या ये खेती को लाभ लेना चाहो तो वो किस प्रकार से इसको लाभ उठा सके है?
1: जी बिल्कुल, किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि किसान को ऐप चलाना नहीं आता तो परिवार का कोई सदस्य, किसान मित्र, कृषि पर्यवेक्षक और कृषि प्रसार कार्यकर्ता या आसपास का कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है। गांव में किसान समूह बनाकर भी डिजिटल जानकारी साझा की जा सकती है। सबसे जरूरी बात है तकनीक से डरना नहीं, धीरे धीरे सीखना है।
0: कोई भाई लोग डिजिटल कृषि ना अपनावे तो भी कम है कोई यहाँ की बातें या कोई सावधानियां यहाँ की भी है के जखम किसान भाई ने ध्यान रखना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो किसान को सही स्रोत से जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा, मोबाइल पर आने वाले अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करे।
0: जी।
1: तीसरा, OTP, अपना ATM पिन और बैंक पासवर्ड जैसी जानकारी किसी के साथ साझा न करे। चौथा, कृषि दवाओं और उर्वरकों के संबंध में केवल प्रमाणित और विशेषज्ञ सलाह पर ही भरोसा करें। और पांचवा, इंटरनेट पर मिली हर जानकारी को सच ना माने और

0: अंतिम बात है कि डिजिटल तकनीक को अपने स्थानीय अनुभव और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के साथ जोड़कर उपयोग करें।
1: जी, और आज कोई किसान है डिजिटल खेती की तरफ आना चाहे या डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करे, डिजिटल किसान बनना चाहे, तो बी के संदर्भ में अगर आप बात करें तो बी किसान भाई ने खट्टा से शुरुआत करनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, मैं किसान को एक बहुत सरल तरीका बताना चाहूंगी। पहला कदम, अपने मोबाइल में मौसम की विश्वसनीय जानकारी देखना शुरू करें। दूसरा कदम, अपनी फसल और क्षेत्र से संबंधित विश्वसनीय कृषि सलाह प्राप्त करें, जिससे मिट्टी का प्रकार व जलवायु आदि की जानकारी मिल सके। तीसरा कदम, बुआई, सिंचाई, उर्वरक, कीट, रोग और उत्पादन का रिकॉर्ड मोबाइल या कॉपी में जरूर रखें।
1: जी।
0: चौथा कदम, फसल बेचने से पहले बाजार भाव की जानकारी ले। पांचवा कदम, सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी विश्वसनीय स्रोत से ही प्राप्त करें। और सबसे महत्वपूर्ण, हर नई डिजिटल तकनीक को पहले समझे और फिर अपनाए।
1: बिल्कुल, आप डिजिटल तकनीक के विषय में बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रहे हो। अब आखिर के मैंने कोई यहाँ की बात जकी छूटगी हुए और किसान आप संदेश के तौर पर बताना चाहो।
0: मेरा किसान भाइयों और बहनों से यही कहना है कि आज खेती में मेहनत के साथ साथ जानकारी और समय पर निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोबाइल को केवल बातचीत और मनोरंजन का साधन न समझे, इसे खेती की जानकारी प्राप्त करने का भी माध्यम बनाएं। मौसम की जानकारी देखें, बाजार भाव जाने, कृषि विशेषज्ञों की ऑनलाइन सलाह ले, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और अपने खेत का रिकॉर्ड जरूर रखें। लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखें कि डिजिटल जानकारी का उपयोग विवेक और सावधानी के साथ करना है। डिजिटल तकनीक किसान की मेहनत का स्थान नहीं लेती, बल्कि किसान की मेहनत को बेहतर निर्णय, बेहतर प्रबंधन और बेहतर योजना से मजबूत करती है। इसलिए किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल तकनीक से डरना नहीं है, इसे धीरे धीरे सीखना है और अपने मोबाइल फोन को इस तरह उपयोग में लेना है कि किसान को लगे कि यह एक चलता फिरता कृषि सलाह केंद्र है।
1: आधुनिक कृषि के मायने डिजिटल तकनीक को उपयोग, ई विषय पर आज अपन जानकारी दे रहा है रेशमा यादव जी। आप रिसर्च स्कॉलर है मंडा भिंडा सोमू जयपुर सो कार्यक्रम का मैंने पधारिया और आज अपन बहुत ही महत्व विषय पर जानकारी दी। एक वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद सा।
2: महिषा, आपने कोरो कोरो धन्यवाद कोनी देवे सा। तो चाला और धन्यवाद स्वरूप सुना एक छोटी सी लोक रचना।

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे हैं?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: हाँ तो मैंने सुनी बहन, लोक रचना तो आप बहुत ही चौकी सी सुनी, पण अब थोड़ी सी मौसम की जानकारी भी भाई लोगों तक पूर्ति कर दियो।
4: आज रे मौसम रे हाल री अगर आपा भाई साहब बात करा तो आपने जयपुर रो जो अधिकतम तापमान है वो 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 डिग्री रहवारो अनुमान है सा। और आपा बात करा अगर कोटा री, कोटा रो भी अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहवारो अनुमान है सा। जहाँ आपा बात करा हा बीकानेर री, तो बीकानेर रो लगभग अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहबारो अनुमान है भाई साहब।
3: और देखो बरसात रो मौसम है भाई, लोग खेतां रे मायने लाग रिया है काम काज के मायने, पण देखो अब घड़ी सरो करण लग रही है। मने सुनी बहन का आज के किसान

0: वाणी कार्यक्रम को टेम अठाई पूरा हो रहे है। तो भाई लोग आज के कार्यक्रम सुनते हैं थका भाई प्रभु दयाल वर्मा।
1: अर मनस्वनी ने दियो विदा, चाला और करा
0: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, मीडियम वेव चार।
3: FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिन्ह चैनल है।

यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार और जोहार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
1: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
1: जी
0: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशोसी वर्मा।
0: और पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
0: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
1: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
0: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
1: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
0: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
1: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
0: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
1: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
0: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
1: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
0: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
0: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
1: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
1: जी,
0: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
5: कौन है?
6: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
5: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
6: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
5: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
6: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
5: ये इस शीशी में क्या है?
6: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
5: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
6: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
5: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
6: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास

0: पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
1: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
3: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
5: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम शोरवीर।

बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र

0: होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा?
1: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: छोड़ेंगे।
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर।
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर।
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।
3: भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
2: दुश्मन। हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो
3: हमला
2: करो। चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए।

0: मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
1: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
2: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
1: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए, अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
1: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
3: हवाले कर दे।
1: यस।
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा।
3: ये ले।
4: ये क्या हुआ सर?
0: कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत, सारे जहां से अच्छा।
6: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी नागौर का ये सिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजने को है, कुछ पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा जैसा हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया

जहां उन्होंने भाषण दिया था। खरगे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप

0: अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। हेलो फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त विकास। कहिए साथियों, क्या हालचाल है भाई? सुहावने मौसम में हम आपसे जब बात करेंगे तो मजा दुगना हो ही जाएगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का जुनून जो छाया हुआ है।

जी हाँ, 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश और दुनिया में बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाएगा। कई विशेष कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का देश की जनता के नाम संदेश होगा और साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 15 अगस्त के दिन अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराने का आग्रह किया है। तो बिल्कुल इस कार्यक्रम का और इस अभियान का हम भी हिस्सा जरूर बनेंगे।

0: तो शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस फोन कॉल के साथ। हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: निगम दिन बोलू सर।
0: हाँ बताइए, क्या हाल है आपके?
1: सर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाला है।
0: बिल्कुल, 15 अगस्त में एक ही दिन बाकी।
1: अब के बरस तुझे धरती गिराने कर देंगे ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ही करते हैं और अब के भी करेंगे।
1: हाँ
0: बताइए, कैसी तैयारियां चल रही हैं स्वतंत्रता
1: बहुत
0: दिवस की?
1: तैयारी चल रही है गुजरात के अंदर सभी स्कूलों में।
0: सभी स्कूलों में चल रही है ना, मुख्य कार्यक्रम स्कूलों में स्टेडियम में ही होगा?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, वो स्कूल है ना।
0: हाँ
1: बड़ी वाली।
0: हाँ हाँ और बताइए क्या सुनवाएं आज आपको?
1: अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन?
1: मालनाथ
0: हाँ बताइए मालनाथ जी, क्या हाल है आपके? कैसे है गांव में, कैसी तैयारी चल रही है स्वतंत्रता दिवस की?
1: गांव को
0: ठीक है, तो बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: गाना
0: हाँ
1: वो फिल्म का नाम जानता नहीं है, और गाना है वो नाम मेरा कलिन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मेरा नमस्कार है, वो
0: अच्छा
1: सुनना है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है साहब, सुनिए मालनाथ जी अपने गांव में ये गीत।
1: कब आएगा? आ जाएगा
0: आज ही आएगा, आज ही आएगा।
1: 8 बजे।
0: हाँ जी, 8:15 बजे।

0: हेलो कार्यक्रम, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार। हेलो फरमाइश
0: हाँ जी, कौन फरमा?
1: सर, मैं इकबाल सिंधल बोल रहा हूँ, नागौर अजमेर सिल्लोंग। शुक्र
0: हाँ बताइए इकबाल जी, क्या हाल हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा मौसम है आपके?
1: अलहमदुल्ला, काम कर रहे हैं, ट्रांस फार्म की फैक्ट्री में ट्रांस फार्म का काम करते हैं।
0: अच्छा, बताइए और क्या हाल चाल है आपके, सब सही है घर में?
1: अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सब राजी खुशी हैं,
0: अच्छा
1: मोहल्ले में परिवार में सब
0: अच्छा अच्छा कौन कौन से कार्यक्रम
1: बढ़िया
0: पसंद आ
1: है।
0: रहे हैं आपको?
1: कार्यक्रम को वैसे तो पुराने गाने पसंद आते हैं, बाकी फिल्मी चैनल के जो भी हैं, गोलमन है, लो
0: अच्छा
1: फरमाइश है, पनियारी
0: अच्छा
1: है, पसंद आते हैं।
0: सभी पसंद आते हैं, तो
1: हाँ,
0: बता दीजिए आज क्या सुनवा दें आपको।
1: आज सर जानी दुश्मन का फिल्म का नाम है, जानी दुश्मन, और गाने के बोल हैं चलो रे लोली उठाओ।
0: चलिए साहब, सुनिए अपने पसंद का ये।

0: आज ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, कौन?
1: टेलर बेबू राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए क्या हाल है, बताइए क्या हाल है, क्या मौसम है आपके वहाँ?
1: मौसम सर 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है,
0: अच्छा,
1: अभी थोड़ी सी देर पहले रुकी है।
0: अच्छा
1: जी सर, कल तो हरियाली अमावस का मेला था हमारे यहाँ। जी सर, गाना सुनेंगे बहू बेगम फिल्म से, पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे।
0: क्या

0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए पहले। हाँ
1: नाम है सलीम,
0: सलीम जी, कहाँ से फरमा रहे हैं?
1: बिंदास रोड जाजोड़ी से बोल रहे हैं। दूध
0: अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं?
1: की डेयरी है, गाय का धंधा है।
0: अच्छा, दूध की डेयरी है। क्या भाव है दूध के आपकी डेयरी के?
1: 50 रुपए।
0: और बताइए, क्या सुना है आज आपको?
1: तो गाना सुनना है, मेरा गाँव मेरा देश,
0: मेरा गांव मेरा देश का कौन सा?
1: शर्मा के।
0: हाय शर्माऊ है। चलिए साहब, सुनिए अपनी पसंद का आइए।

0: तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। यह आपको कैसा लगा, आपको कितना पसंद आया, ये हमें ज़रूर बताएं। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया सीमा गोस्वामी ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। और अब मैं विकास आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के सिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार संदेश से हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद

0: मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है, अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई

0: महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर $570 करोड़ हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह $520 करोड़ था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग $900 करोड़ और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ $220 करोड़ हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।

0: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे प्रस्तुत है सुगम संगीत। यह है सुगम संगीत की पहली पेशकश। आवाज आशा भोसले की है।

अभी आपने ये गज़ल सुनी, आवाज़ थी मुन्नी बेगम की। इस गज़ल का साथ ही सुगम संगीतम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।

FM 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजकर 15 मिनट हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: जा।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
3: आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है नया दौर।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सलील चौधरी, फिल्म का नाम है मधुमती।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। नख्वानिगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद अली का, फिल्म का नाम है लीडर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही, मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

0: कम।
1: फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक तासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
2: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगे, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
2: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
2: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
2: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
2: नहीं, अभी इसकी जरूरत है।
1: जरूर।

0: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं। तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
1: अब फिर कब मिलना होगा?
0: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
1: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।
1: वो

फिल्म देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमती अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही गई।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे हैं गुंडे कहीं के।
2: अरे देख रही धनु, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन?
1: हाँ टेम लावा है। चलत ना ही सारी से की निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे वाह रे महारानी वाह, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हो, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे, तोरी छाती काहे फटे रे? एक हराती करता इको समझाए दियो,
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है दिखा।
1: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक कच्चा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंती माला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंती माला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंती माला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है,

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।